0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বৈষ্ণৱী। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा। साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2,100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartruhari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from Lower House and 10 from the Upper House. While the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta, Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as the chairperson of the Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of the Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radha Mohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Ruti has been appointed as the chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by Congress MP Shoptagiri Ulaka. BJP MP Nishikant Dubey has been appointed as the chairperson of Committee on Communications and Information Technology. The term of these committees will be effective from the 26th of last month. Niti Aayog member Rajiv Gauba has emphasized the need for regulatory frameworks to evolve alongside a rapidly changing geopolitical, technological and economic environment. He emphasized that the challenge before policymakers is not to choose between regulation and growth, but to develop regulations that manage risk while supporting innovation, competition and investment. Mr. Gauba stated this while addressing the plenary session on regulatory oversight in an age of disruption at the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi yesterday. Emphasizing the need for a proportionate approach, Mr. Gauba said regulatory requirements should be calibrated to the nature and consequences of the risk involved. The Ministry of External Affairs has summoned the Charge d'Affaires of Pakistan High Commission to lodge India's strong protest over the continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. India also categorically rejected the baseless and motivated allegations regarding an incident in the Firozpur sector, Punjab, along the international border on Friday. The External Affairs Ministry said that the Pakistani side was informed that three individuals infiltrated into the Indian territory, and despite multiple warnings by the BSF to return to Pakistan, they continued to move towards the border fence. The BSF was compelled to engage them for posing an imminent security threat. India said this incident highlights a clear pattern of repeated cross-border movement by armed narcotic syndicates operating from Pakistan. Pakistan was urged to investigate these cross-border infiltrations, drug smuggling activities and the complicity of Pakistan border guarding forces and to take appropriate remedial measures. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smith Machar and Prime Minister Narendra Modi to light the ceremonial flame at Israel's upcoming Independence Day celebrations. During a telephonic conversation with Captain Machar, Mr. Netanyahu praised the Indian pilot as a hero of India, Israel and the world for his bravery in foiling a mid-air attack. He also wished Captain Machar a speedy and complete recovery and conveyed his best wishes to the pilot's family. The Aichi Nagoya Asian Games 2026 are set to conclude today, bringing more than 2 weeks of exciting sporting action to an end. The closing ceremony will be held at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, the same venue that hosted the opening ceremony, and is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. India has put up an impressive performance at this year's Games, securing the fourth place in the overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India's women's flag bearer for the closing ceremony has been confirmed as shooting star Neeru Dhanda, who will proudly carry the tricolour in Nagoya. The ceremony will feature traditional closing proceedings, including the parade of athletes and the formal conclusion of the games. And that is the end of this news bulletin.
0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্জত আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত। অনুষ্ঠান পৰিস্থিতি।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 7:55 আঞ্চলিক বাতৰি, 8 চামাচাৰ প্ৰভাত, 8:15 মৰ্ণিং নিউজ, 8:30 নৰ্থ ইষ্ট নিউজ ইন ইংলিছ শুনিবলৈ পাব।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় পুৱাৰ বাতৰিৰ সৈতে মই সঞ্জীৱনী পাঠক। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি অসম 2026 বিধেয়কত অনুমোদন জনাইছে। ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যত উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি ৰূপায়ণৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে। অসম বিধানসভাত যোৱা 27 মে'ত গৃহীত এই বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যত বহু বিবাহ নিষিদ্ধ, বিবাহ বিচ্ছেদ, লিভ ইন সম্পৰ্ক আৰু কন্যা সন্তানক সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰ প্ৰদানৰ দৰে বিষয়ত উমৈহতীয়া কাঠামো প্ৰৱৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আইনখন বলবৎ হলে বহু বিবাহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ হোৱাৰ লগতে বিবাহ বিচ্ছেদ আৰু লিভ ইন সম্পৰ্কত থকাসকলৰ পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক হ'ব। উমৈহতীয়া দেৱানী বিধিৰ অধীনত সকলো বিবাহ আৰু লিভ ইন সম্পৰ্ক ক্ৰমে 60 আৰু 30 দিনৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন নহলে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব। লিভ ইন সম্পৰ্ক 30 দিনৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন নকৰিলে 3 মাহ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড আৰু 10,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বা 2টা শাস্তি হ'ব পাৰে। একেদৰে বিধেয়কখনত বহু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক 7 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। অৱশ্যে ৰাজ্যৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ লোকসকলক উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি পৰিসৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে। কেন্দ্ৰীয় উচ্চ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ অধ্যয়নৰ বাবে 5টা উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে। উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰা মতে অসমীয়া, বাংলা, মাৰাঠী, পালি আৰু প্ৰাকৃত ভাষা অধ্যয়নৰ বাবে এই কেন্দ্ৰকেইটা স্থাপন কৰা হ'ব। এই উদ্যমে উন্নত শৈক্ষিক গৱেষণা, ভাষিক তথা সাহিত্যিক ঐতিহ্যৰ সংৰক্ষণ তথা ডিজিটেল ৰূপ প্ৰদান আৰু এই ধ্ৰুপদী ভাষাসমূহৰ জ্ঞানৰ প্ৰসাৰৰ বাবে সুকীয়া প্ৰতিষ্ঠানগত সহায় আগবঢ়াব বুলি আশা কৰা হৈছে। অসমৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবংগৰ বিশ্বভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়, পুনেৰ ডেক্কান স্নাতকোত্তৰ মহাবিদ্যালয় আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, ওড়িশাৰ ওড়িশা কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গুজৰাটৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰসমূহ স্থাপন কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপে দেশৰ ধ্ৰুপদী ভাষাসমূহৰ অধ্যয়ন, গৱেষণা আৰু সংৰক্ষণত সহায় কৰিব। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ধ্ৰুপদী অসমীয়া ভাষাৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ বাবে অনুমোদন জনোৱাৰ সিদ্ধান্তক মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদৰণি জনাইছে। অসমীয়া ভাষাৰ নিৰ্ধাৰিত কেন্দ্ৰটো তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা হ'ব। এই কেন্দ্ৰসমূহে ভাষা আৰু সাহিত্যৰ ঐতিহ্যক কেন্দ্ৰ কৰি গৱেষণা, ডিজিটেল সংৰক্ষণ, নথিপত্ৰ সংৰক্ষণ আৰু জ্ঞানৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত কয় যে অসমীয়া ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ পাছৰে পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে ভাষাটো সমৃদ্ধ ঐতিহ্যৰ সংৰক্ষণ আৰু বিকাশৰ বাবে বিশেষ কেন্দ্ৰ এটা স্থাপন কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আহিছিল। এই কেন্দ্ৰটো স্থাপনৰ ফলত অসমীয়া ভাষাক লৈ বিস্তৃত গৱেষণাৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টি হ'ব আৰু পাণ্ডুলিপি তথা অন্যান্য সাহিত্যিক সম্পদৰ ডিজিটেল সংৰক্ষণৰ কাম সহজ হ'ব। এই পদক্ষেপৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে।
2: ইণ্ডিয়াত কোনো এটা লেংগুৱেজ ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা পায়, সেই লেংগুৱেজটোৰ ওপৰত গৱেষণা কৰাৰ কাৰণে একোটা চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ নিৰ্মাণ হৈছে। ভাৰত চৰকাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ধ্ৰুপদী অসমীয়া ভাষাৰ চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ, য'ত ভাষাটোৰ ৰিচাৰ্চ হ'ব, গৱেষণা হ'ব, ভাষাটোক বহু যুগলৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা হ'ব, এই গোটেই দায়িত্বটোৰ বাবে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় এটা চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া।
1: সেৱা সেতু অভিযানৰ অংশ হিচাপে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জিলাখনৰ 5টা উন্নয়ন খণ্ডত বিশেষ সেৱা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অভিযানৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা আমগুৰি উন্নয়ন খণ্ডৰ পি এম শ্ৰী আমগুৰি হালুৱাটিং মজদুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। শিবিৰত বিভিন্ন চৰকাৰী সেৱা, জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ সুবিধা, আবেদন পঞ্জীয়ন আৰু নথি পৰীক্ষণৰ সুবিধা ৰাইজক প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত প্ৰকাশ পাইছে। সেৱা সেতু অভিযানৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অন্তৰ্গত দুলিয়াজান বিধানসভা সমষ্টিৰ ভাদৈ মণ্ডলত বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই শিবিৰত অঞ্চলটোৰ লোকসকলো বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ লগতে ঔষধৰ যোগান ধৰা হৈছে। জাপানত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছৰ আজি সামৰণি পৰিব। নাগয়া চহৰৰ মিজোহো পাৰ্ক এথলেটিক্স ষ্টেডিয়ামত ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 6 বজাত সামৰণি অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব। ভাৰতে এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে 21টা সোণ, 27টা ৰূপ আৰু 37টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 85টা পদকেৰে প্ৰতিযোগিতাৰ তালিকাত চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিছে। সামৰণি অনুষ্ঠানত শ্বুটাৰ নিৰু ধান্দা ভাৰতৰ মহিলা ধবজাবহনকাৰী হ'ব। খেলুৱৈসকলৰ কুচকাবাজ আৰু খেলৰ আনুষ্ঠানিক সামৰণিসহ ভালেমান পৰম্পৰাগত কাৰ্যক্ৰমেৰে সামৰণি অনুষ্ঠান সজাই তোলা হ'ব। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল। পৰৱৰ্তী বাতৰি বুলেটিন পুৱা 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह। भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
4: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल सदन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
3: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सेकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
6: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
7: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
8: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
3: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्धविराम के लिए भारत के प्रस्ताव को चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्धविराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
3: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
11: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन 5 के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी, दैनिक जागरण की सुर्खी है। स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां।
7: जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ौती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ौती।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Lok Sabha Speaker Om Birla reconstitutes several department-related parliamentary committees for 2026-27 term. Union Education Ministry approves 5 new centres of excellence for studies in classical languages, Assamese, Bengali, Marathi, Pali and Prakrit. India summons Pak envoy to register strong protest over continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. 19th Pravasi Bharatiya Divas convention to be held from the 7th to 9th of January next year in Kolkata. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu describes Indian pilot Smit Machar, hero of Israel, India and entire world, invites him and Prime Minister Narendra Modi to Israel's Independence Day ceremony. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan. Trap shooter Neeru Dhanda to be India's flag bearer for the closing ceremony. And now the news in detail. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several committees related to different ministries. BJP MP Bharthru Hari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from the lower house and 10 from the upper house. While the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta, Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as chairperson of the Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radha Mohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Rudi has been appointed as the chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by the Congress MP Saptagiri Olaka. BJP MP Nishikant Dubey has been appointed as the chairperson of Committee on Communications and Information Technology. The term of these committees will be effective from the 26th of last month. The Ministry of Education has approved 5 centres of excellence for studies in classical languages. Department of Higher Education has approved the establishment of 5 centres of excellence for studies in classical Assamese, classical Bengali, classical Marathi, classical Pali and classical Prakrit. We have more from our correspondent.
13: The Centres of Excellence will be established at Tezpur University in Assam, Vishwa Bharati University in West Bengal, Deccan College Postgraduate and Research Institute in Pune, Central University of Odisha and Central University of Gujarat. The initiative will provide dedicated institutional support for advanced academic research, preservation and digitization of linguistic and literary heritage and wider dissemination of knowledge relating to these classical languages. The establishment of these 5 centers marks a significant step towards strengthening the institutional ecosystem for the study, research and preservation of India's classical languages. With Suparna Saikia, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
12: The 19th Pravasi Bharatiya Divas Convention will be held from the 7th to the 9th of January next year at Kolkata in West Bengal. The convention will be organized by the Ministry of External Affairs in partnership with the West Bengal government. We have a report.
14: The PBD convention will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. President Draupadi Murmu will confer the Pravasi Bharatiya Samman Awards and preside over the valedictory session. The convention will also have a youth PBD segment. The event will bring together Indian diaspora members, young diaspora leaders, entrepreneurs, professionals, academics, innovators and other stakeholders from across the world. External Affairs Ministry said that the Pravasi Bharatiya Divas is celebrated to pay tribute to Mahatma Gandhi, who returned to India from South Africa on 9 January 1915. The 19th edition of the flagship diaspora engagement event will build on the success of previous editions to foster the deep connections of the Indian diaspora with India, celebrating their contributions to India and the world. Shundip Andashgupta, Akashbani News, Kolkata.
12: Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITI's PM Setu has completed 1 year today. The PM Setu scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was launched on the 4th of October last year. We have more from our correspondent.
15: The initiative seeks to strengthen industry-led governance, upgrade training infrastructure, and promote demand-driven courses in line with evolving workforce requirements. It aims to enhance the overall quality and relevance of vocational training by transforming Government of India's Industrial Training Institutes, ITIs, into modern industry-aligned training institutions. The scheme has a total outlay of over 60,000 crore rupees, promising 30,000 crore rupees from the center, 20,000 crore rupees from states, and 10,000 crore rupees from industry. ITIs provide vocational training to equip youth with practical skills for employment and industry. Under the Craftsman Training Scheme, training is offered through government and private.

0: নমস্কাৰ, এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। সমুশ্ৰোতালৈ সাদৰ সম্ভাষণ জনাই মুকলি কৰা হৈছে আজিৰ দ্বিতীয় অধিৱেশন। অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্জত আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত। এতিয়া ডিউটি ৰুমত আছে সুনন্দা থৌনাজাম, নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত লক্ষ্মিতা শইকীয়া, দৰ্শন কাশ্যপ, নিখিল শৰ্মা, ট্ৰান্সমিটাৰত আছে মিথিলেশ কুমাৰ ৰঞ্জন, বিজিৎ শৰ্মা। খন্তেক পাছতে পোষ্ট বক্স নম্বৰ 111 আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব আৰু 12:10 পৰা সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: हमारे भविष्य, हमारे वर्तमान को हमारे इतिहास से, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से भी जोड़ता है। एक छोटा सा शब्द लेकिन अपने आप में अथाह समुद्र जैसा, स्वच्छता। आज का हमारा कार्यक्रम बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, स्वच्छता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बापू का किन शब्दों में उल्लेख किया है, आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों, उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है।
1: तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्गार बापू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में और स्वच्छता के बारे में। आइए इस विषय के बारे में विस्तार से जानते हैं और ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि हमें स्वतंत्रता से पहले जो मंत्र दिया गया था, क्या आज भी वो हमारे लिए कारगर है? आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या उनका समाधान हमें बीते समय में मिलता है? और किस तरह से बापू का जो दर्शन है, महात्मा गांधी का जो चिंतन है, वो समसामयिक है? आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञ को, डॉक्टर राजीव रंजन गिरी। आप गांधीवादी चिंतक और विचारक हैं, आप लेखक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, गांधी स्मृति और दर्शन समिति राजघाट से आप जुड़े रहे हैं, गांधी दर्शन की पत्रिका अंतिम जन के संपादक रहे हैं, गांधीवाद रहे न रहे, पुरुषार्थ, त्याग और स्वराज सहित कई पुस्तकों के आप संपादक और लेखक भी हैं। डॉक्टर राजीव रंजन, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जैसा कि हमने अभी सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी के जो विचार हैं उनका उल्लेख किया है, स्वच्छता जो मंत्र हमें दिया गया है फिर से हमें उसकी याद दिलाई है और हमें ये कहा है एक तरह से कि हम इससे जो कुछ सीख सकते हैं वो सीखें। लेकिन बहुत सारे सवाल भी हमारे मन में आते हैं, तो इन्हें और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ये बताएं कि गांधी जी ने स्वच्छता को कैसे स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा।
3: दरअसल गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे और वहां से कोई 22-23 साल अपना जीवन बिताने के बाद हिंदुस्तान आए, तो उन्होंने भारत का भ्रमण किया था
1: जी।
3: यह सलाह थी उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की। और ये भ्रमण उन्होंने तीसरे दर्जे में किया था, रेलवे में तब तीसरा दर्जा होता था। वे कांग्रेस के कार्यालयों में जाते थे, उन दिनों आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की थी,
1: तत्कालीन
3: कांग्रेस की
1: जी।
3: और कांग्रेस के कार्यालयों में, कांग्रेस के अधिवेशनों और सम्मेलनों में होने वाली गंदगियों की तरफ भी उनका ध्यान गया था। 1916 में जब महामना मदन मोहन मालवीय जी के आमंत्रण पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्घाटन समारोह में शामिल होने गांधी जी गए
1: जी।
3: तो उससे एक दिन पहले वे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गए थे। वहां उन्होंने नोट किया कि बाबा विश्वनाथ के यहाँ जाने की जो गलियां हैं वे बेहद गंदी हैं। गांधी जी ने उनके ध्यान में आया कि अगर कल अंग्रेज चले भी जाएं तो क्या बाबा विश्वनाथ की गली साफ हो जाएगी? क्या अंग्रेजों ने उन गलियों को गंदा किया है? जब वे कह रहे थे तो उनके ध्यान में था कि दरअसल हमारे यहाँ गंदगी फैलाने और गंदगी की सफाई करने, इन दोनों के बीच एक बड़ी खाई है, एक द्वैत है। तो गांधी जी ने सोचा कि जब तक व्यक्ति अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को नहीं समझेगा और बुनियादी जरूरतों को नहीं समझेगा, बुनियादी दायित्वों को नहीं समझेगा, तब तक उसको स्वराज के आंदोलन से जोड़ा नहीं जा सकेगा
1: जी।
3: तो गांधी जी ने जो भाषण किया था उस भाषण में इस सवाल को उठाया था और ये जिक्र किया था। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं समझता हूँ कि वो लिया होगा विचार गांधी जी का। उन्होंने पूछा उसी भाषण में, और उस भाषण में देश भर के सारे राजे रजवाड़े आए थे। 1916 का बनारस में दिया गया गांधी जी का वो भाषण उनके पूरे व्यक्तित्व और उनके पूरे दर्शन को समझने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। वहां उन्होंने पूछा था युवाओं से, सबसे, कि अपनी गंदगी के लिए हम दूसरे को कब तक जिम्मेवार ठहराएंगे और अपनी काहिली या अपनी अकर्मण्यता के लिए क्या हम अंग्रेजों को ही जिम्मेवार ठहराएंगे। और तभी उन्होंने ये सवाल किया था कि कल के डेट में अगर अंग्रेज चले गए तो जिस बाबा विश्वनाथ को हम इतना पवित्र और अपना आराध्य मानते हैं, क्या उनकी गलियां साफ हो जाएंगी? ये गलियां हमने गंदी की है।
1: तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस तरह से गांधी जी ने स्वच्छता को सामाजिक सुधार का भी एक माध्यम बना दिया था?
3: दरअसल था ये कि हमारे यहाँ एक फर्क था, जो लोग गंदगी की सफाई में जुड़े हुए थे वो दरअसल एक पूरा सामाजिक तबका था, और जो गंदगी फैलाते थे उनको श्रेष्ठ, और जो गंदगी की सफाई करते थे उनको हेय मानने की रवायत थी हमारे यहाँ। गांधी जी दरअसल इस पूरे दर्शन को, इस पूरे विचार को ही बदलना चाहते थे। इसी में जुड़ा हुआ था उनका विचार, जो दार्शनिक स्तर पर समझ में आता है, कि शरीर का श्रम और बौद्धिक श्रम, मानसिक श्रम, दोनों एक ही लेवल पर माने जाने चाहिए
1: जी।
3: ये नहीं कि बौद्धिक श्रम करने वाला श्रेष्ठ है और शारीरिक श्रम करने वाला निकृष्ट है, ऐसा गांधी जी नहीं मानते थे। इसीलिए उन्होंने जो हमारे समाज में किन्हीं कारणों से जो ये चली आ रही थी परंपरा, जिसमें एक खास सामाजिक समुदाय को, लोगों को लाद दिया गया था कि यही लोग गंदगी की सफाई करेंगे, तो इसको वो पलट रहे थे
1: जी।
3: तो दरअसल गांधी जी ऐसा करके एक समता पर आधारित समाज के निर्माण की कोशिश में भी लगे थे, भले ही वे इस बात को सीधे तौर पर कहते हों या न कहते हों
1: जी। बहुत रोचक बातचीत ये हो रही है, मैं आपसे बहुत सारे सवाल इस बारे में पूछने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। कौन सा गाना आप सुनवाना चाहते हैं?
3: एक फिल्म है तूफान और दिया, मन्ना डे साहब ने उस गीत को गाया है
1: जी।
3: गीत का बोल है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की
1: जी। बहुत ही प्यारा सा गाना है और एक संदेश भी हमें देता है, लीजिए हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि की, जो है स्वच्छता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बापू के विचारों का, उनके चिंतन का और स्वच्छता का उल्लेख किया है। और आज स्टूडियो में हमारे साथ है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन गिरी, गांधीवादी चिंतक और विचारक आप हैं, लेखक हैं, गांधी दर्शन की पत्रिका के आप संपादक भी रहे हैं। राजीव जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने जिक्र किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तो शायद बापू के जो संभाषण रहे हैं, उन्होंने जो भाषण दिए, जो संवाद किया जनता से, वहां से वो प्रेरित हुए। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान में महात्मा गांधी जी के चश्मे को ही एक प्रतीक चिन्ह बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि ये अभियान गांधी जी के स्वच्छता के सपने को जन जन तक पहुंचा पाया, उसे साकार कर पाया?
1: अगर आप 1915 और उसके पहले सफाई को लेकर जनता के बीच चेतना के प्रसार को अनुपात के तौर पर या तुलना के तौर पर देखेंगी तो एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा। सामान्य और जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता था, लोगों को लगता था ये बहुत छोटा और मामूली विषय है, और इसी मामूली विषय को गांधी जी ने तब उठाया था और भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने उसी विषय को जिक्र करके और उससे खुद को जोड़कर भी केंद्र में ला दिया था। और जब एक सामान्य विषय माने जाने वाले मसले को, मुद्दे को केंद्र में लाने की कोशिश देश का कोई बड़ा नेता करता है तो जाहिर है उसका असर अखिल भारतीय होता है। और चूंकि ये बहुत सुचिंतित और सुनियोजित ढंग से भारत सरकार ने इसको चलाया था और देश के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इससे जोड़ा था, तो इस वजह से भी बड़े पैमाने पर ये प्रसार हुआ
0: जी।
1: दूसरा, ये समय वही है जब बड़े पैमाने पर हमारे देश में कचरा इकट्ठा हो रहा था, कई तरह के ई कचरा भी और सब कुछ, तो ये एक तरह से सही समय पर लिया गया फैसला भी था जिससे जनता उसके प्रति भी या निकट भविष्य में आने वाली अस्वच्छता के तमाम आयामों को भी साफ करने के प्रति सचेत हो जाए, जागरूक हो जाए, तो इसका असर तो हुआ ही है निश्चित तौर पर
0: जी। जैसे आपने ई वेस्ट की बात की तो ये सही है कि वर्तमान समय में हमारी चुनौतियां थोड़ी अलग हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक है, ई वेस्ट है या उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, एक तरह से हम सभी उसके शिकार हैं। आपको क्या लगता है कि इन सब के बीच में गांधी दर्शन से क्या हमें कोई समाधान मिलता है?
1: देखिए, असल में ये जो चुनौती है ये पूरे विश्व की है
0: जी,
1: और आप उसको दूसरे शब्दों में चाहें तो कहें कि ये पूरे मनुष्यता के भविष्य पर खड़ा हुआ सवाल है, प्रश्नांकन है। तो ये जो चुनौतियां, ये जो समस्याएं बढ़ती जा रही है जिसके वजह से प्रकृति, पर्यावरण और पारिस्थितिकी चिंता बढ़ रही है
0: जी,
1: उपभोक्ता संस्कृति की वजह से ऐसा लगता है कि सारे प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और ऐसे में हमारी भावी पीढ़ी और हमारी मनुष्यता का क्या हश्र होगा
0: जी।
1: उदाहरण के तौर पर देखिए, पानी समाप्त हो जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, ओजोन में छेद होता जा रहा है, उसका सब कुछ बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि ये दुनिया ऐसी ही बनी रहे और इससे बेहतर हो, तो विकल्प के तौर पर दिखेंगे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही। उन्होंने सुझाया था और उनका वो विचार दुनिया भर के लोग, अब के इन्वायरमेंटलिस्ट इसके प्रति ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा था बहुत बेबाकी के साथ कि इस नेचर में, इस प्रकृति में दुनिया के सारे लोगों की जरूरतों को पूरी करने की क्षमता है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच को पूरी नहीं कर सकती ये प्रकृति। तो जो ये उपभोक्तावादी संस्कृति है जहां दरअसल हम अनावश्यक ढंग से आवश्यकता पैदा करते जा रहे हैं, मुनाफा के चक्कर में कुछ चीजों के आविष्कार होने के बाद उसकी जरूरत विज्ञापनों के जरिए या अलग अलग तरह के पीयर प्रेशर के जरिए उसको पैदा किया जा रहा है, तो रास्ता तो वही है। अगर आप सुकून का जीवन ये मनुष्यता चाहती है, व्यक्ति के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी, राष्ट्र और दुनिया के स्तर पर भी, तो जाना तो पड़ेगा उसी दर्शन के पास। और दरअसल ये दर्शन भारत की आर्ष परंपरा का निचोड़ है। हमारे यहाँ आप ध्यान दीजिए, पुराने समय में जो महान जिनको हम मानते थे वे सारे ऋषि होते थे
0: जी।
1: आप उन्हें

0: उसकी जरूरतों की वस्तुएं या उनके भोग की वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं बेहद सीमित होती थी, यानी जो सबसे कम कंज्यूम करता था वो हमारी परंपरा में सबसे महान माना जाता था
1: जी।
0: पर एक उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ पूंजीवाद के विकास के बाद, और उसके बाद आवश्यकता से अधिक जो अधिकाधिक उपभोग करने लगा उसी को बड़ा मानने का चलन हमारे यहाँ मौजूद हो गया। तो दरअसल ये दो तरह की सभ्यता दृष्टि है, दो तरह की संस्कृति दृष्टि है, और गांधी की दृष्टि वो पुरानी भारतीय ऋषि परंपरा से जुड़ती है, जहाँ कहती है कि आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है, जितने से आप एक अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं, जिसको अब मिनिमलिस्ट कहा जा रहा है, तो आप उसको अगर जी सकते हैं तो उतनी ही वस्तुओं का उपभोग आप करें, नहीं तो आपका अपना ही जीवन संकट में पड़ेगा, और अंततः आपका अपना जीवन जो संकट में पड़ेगा वो आपकी भावी पीढ़ियों के लिए और दुनिया के लिए, मनुष्यता के लिए एक संकट के तौर पर चिन्हित किया जाएगा
1: जी। इसीलिए शायद हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, इसीलिए हम पर कैपिटा इनकम की जो बात कर रहे हैं उसका अनुपात हमें सही रखना हो, तो कहीं ना कहीं इन सब के मूल में गांधी दर्शन आ ही जाता है। मैं अब आपसे बात करना चाहूंगी सोशल मीडिया के बारे में। राजीव जी, हम कैसे सोशल मीडिया के युग में गांधी जी के विचारों को और फैला सकते हैं या समझ सकते हैं या ये मान सकते हैं कि ये विचार समसामयिक हैं?
0: दरअसल हमें देखना ये होगा कि सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को एक मायने में अभिव्यक्ति दे दी है
1: जी।
0: और अब उसकी अभिव्यक्ति का दायरा उसके अपने कमरे और अपने आस पड़ोस के लोगों की बजाय ग्लोबल हो सकता है। तो गांधी जो हमेशा सिखाते थे कि आप किसी के विचार से भले ही असहमत हों
1: जी,
0: पर उसके प्रति सहिष्णु हो, आप अपनी असहमति को भी सलीका में दर्ज कराएं
1: जी,
0: आप जब तक किसी सत्य को न समझते हो, न जानते हो, तब तक उसको अभिव्यक्त न करें, यानी पहले अपने अंतर मन में तमाम स्रोतों से उसकी जांच पड़ताल कर लें
1: जी।
0: ऐसा नहीं करने की वजह से हो ये रहा है कि लोगों को जो आधा अधूरा या गढ़ा हुआ सच मिल रहा है, तथ्य मिल रहा है, उसको लोग अभिव्यक्त कर रहे हैं और उस पर अपना विचार रख रहे हैं, उसके आधार पर अपनी पक्षधरता तय कर रहे हैं, और उस वजह से एक बड़ी खेमेबंदी और मुश्किलें पैदा हो रही है और समाज में नफरत का प्रसार हो रहा है
1: और विचारों का उथलापन भी
0: बिल्कुल
1: हर जगह
0: बिल्कुल है। तो गांधी सिखा रहे हैं, दरअसल उनकी बुनियाद में है अहिंसा और सत्य
1: जी।
0: तो आप चाहे जितने अहिंसक हों, आप चाहे जितने किसी से असहमत हों, पर अपनी अहिंसक भाषा में उसको दर्ज कराएं और उस व्यक्ति के प्रति आप घृणा न करें। आपके दर्ज कराने का मतलब उसकी अंतर चेतना को परिवर्तित करने की हो कि आप अपनी बातों से उसको प्रभावित कर पाए। एक बिहार में पैदा हुए शायर थे कलीम अजीज
1: जी,
0: उनकी एक पंक्ति है, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए
1: जी।
0: तो ये जो कहने का सलीका हो, यानी आपकी बात, आपके तर्क भरे ही कठोर हो, पर आपकी भाषा और उसको अभिव्यक्ति करने का ढंग मधुर हो
1: जी,
0: वो कोमल हो, यही गांधी जी करते भी थे। गांधी जी पूरा जीवन जिस साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि उनकी भाषा में कोई बेअदबी हो। वो आपको दिखेगा कि वो उनको भी एक मित्र के तौर पर संबोधित कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं, उनके मन में ये भावना है कि ये आज हमारे प्रति अनुदार है, लेकिन इसके भीतर भी किसी ईश्वर का अंश है, तो मेरी बात से आज न कल उस पर असर होगा और वो भी अपने को पहचानेगा और फिर इसी क्रम में एक बेहतर दुनिया बनेगी
1: जी।
0: तो ये जो सोशल मीडिया ने बड़े पैमाने पर फैलाया है, कहीं कहीं अच्छा और कहीं कहीं बुरा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का असर इसका दिख रहा है, तो दरअसल गांधी जी का विचार सचेत करता है हम सबको जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सबको, कि आप किसी भावावेग में कोई बात उस पर न तो कोई अक्षर उस पर दर्ज करें और न तो कोई वाणी अपनी अभिव्यक्त करें
1: जी। यानी जो हमारे यहाँ श्रवण, चिंतन और मनन की परंपरा है, उसके बाद अपना विचार रखें, उसे भी आजमाएं, और आपने कहा कि हम जो हैं वो सत्य का साथ भी ना छोड़ें। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी राजीव जी, कि गांधी जी का जो सत्य का सिद्धांत है, क्या वो आज के समय में, आज की जो दुनियादारी है जिसे हम कहते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल होना है हमें, उसमें वो कितने प्रतिशत तक शामिल हो सकता है? और जो हमारे युवा हैं, हमारे जेन ज़ी हैं, जिन पर कहीं ना कहीं ये प्रेशर तो है ही कि आपको सोशल मीडिया में भी अपना एक अंश रखना है, एक बहुत बड़े से आकाश में आपको अपना हिस्सा भी सुरक्षित रखना है, जिसे हम कहते हैं बीइंग वोकल, कि आपके लिए कोई और बात नहीं करेगा, आपको खुद को स्थापित करना है, इस प्रेशर के साथ ये सत्य का सिद्धांत लेकर हम कितना चल सकते हैं, कैसे सामंजस्य होगा?
0: दरअसल चाहे जितनी दुनियादारी और प्रैक्टिकल किस्म की बातें हों, पर जो शाश्वत बातें हैं, मसलन क्या करुणा का स्थान कम हो जाएगा?
1: जी,
0: जैसे करुणा का स्थान नहीं कम होगा, जैसे प्रेम का स्थान नहीं कम होगा, वैसे ही चाहे हम मानते हों कि ये दुनिया बहुत लफाजी, बेईमानी और जोड़ तोड़ की है, बावजूद इसके सत्य की अपनी महिमा बरकरार ही रहेगी।
1: जी,
0: आप चाहें तो आप समझ सकते हैं कि दरअसल रास्ता वही है। हम दुनिया भर के लोग अगर गलत चीज को तवज्जो दे रहे हों, तो ये तो नहीं मान लेंगे कि गलत ही सबसे बड़ा मूल्य है।
1: जी,
0: दुनिया भर के लोग बेईमानी के सहारे आगे बढ़ रहे हों, तो हम ये तो नहीं मान लेंगे कि बेईमानी ही सबसे बड़ा वैल्यू है।
1: जी,
0: चूंकि ये जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि दुनियादारी सीखनी है, तो ये दुनियादारी अच्छाई के रास्ते से भी जाती है। और अगर आप तात्कालिक न देखें, दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में सोचें, तो अंततः सफल वही होता है जिसके रास्ते में सच्चाई हो, जिसके मार्ग में सच्चाई हो। दूसरी बात जो वोकल होने की है, गांधी जी यही तो कर रहे थे। भारत के उन तमाम निर्बल लोगों को और वाणीहीन लोगों को उन्होंने निर्भयता का पाठ पढ़ाया और उनके कंठ को वाणी दी, तभी तो वो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सामने आकर सीना तान कर खड़े हो जा रहे थे।
1: जी,
0: जिस गांव समाज के लोग सिपाहियों की लाल पगड़ी को देखकर भाग जाते थे, वे उनके अधिकारियों के सामने अपनी आजादी की बात करने लगे थे।
1: जी,
0: तो गांधी जी का दर्शन किसी को वोकल होने से नहीं रोकता, बल्कि उस वोकल होने में उसके अपने दायित्व को जोड़ने की बात करता है, कि वो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेवारी को लेकर भी वोकल हो और उसके प्रति भी सचेत हो।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी समझाया कि किस तरह से हम गांधी दर्शन से ही बहुत सारे समाधान पा सकते हैं। यहाँ मैं आपकी पसंद का एक और गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
0: जी, देश प्रेमी फिल्म का गीत है।
1: जी,
0: मोहम्मद रफी साहब जी ने गाया है। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको।
1: जी,
2: लाल

0: तो इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यानी स्वच्छता की। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं गांधीवादी चिंतक और विचारक डॉक्टर राजीव रंजन गिरे। राजीव जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम बहुत से कामों के लिए आज तकनीक पर निर्भर हैं, बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है, ऐसे में निर्माण भी है, ऐसे में पर्यावरण के साथ कहीं ना कहीं हम एक तरह का समझौता भी करते हैं, वनों की कटाई है या फिर जल जो है या हमारे इस तरह के संसाधन हैं उनका दुरुपयोग भी होता है। गांधी दर्शन हमें इस बारे में क्या सिखाता है, तकनीक और गांधीवादी विचार जो है उनके बीच में कैसे सामंजस्य होगा?
1: दरअसल गांधी जी के बारे में जो कई धारणाएं उनका कुपाठ करती हैं या उनको अवमूल्यित करती हैं, उनको नहीं समझती है, उसमें एक विचार यह भी है जो आपके सवाल के जरिए आ रहा है और ये लगभग दुनिया के ज्यादातर लोगों के मानस में है
0: जी।
1: गांधी जी तकनीक के विरोधी नहीं थे, दरअसल वे तकनीक और तकनीक में फर्क करने की बात करते थे। मैं आपको दो उदाहरणों से बताता हूं। जिस सेगल ने सिलाई मशीन की खोज की थी, गांधी जी उसके बड़े प्रशंसक थे और वो कहते थे कि सिलाई मशीन के आविष्कार के पीछे कारण था उस व्यक्ति की पत्नी जो सुई से दिन भर सिलाई करती थी और उससे जो उसकी आंख और उसके हाथों में पीड़ा होती थी, उस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए सिलाई मशीन एक तकनीक के तौर पर और उस समय के लिहाज से वो बहुत मॉडर्न तकनीक रही होगी
0: जी,
1: उसका उसने आविष्कार किया। तो दरअसल गांधी जी कहते थे कि जिस तकनीक के आविष्कार के पीछे कोई प्रेम है या मनुष्यता के प्रति प्रेम है, जिससे आपके काम में भी सुविधा हो, आपका उत्पादन भी बढ़े और उससे किसी पर अत्याचार न हो रहा हो, किसी के हक को आप छीन नहीं रहे हो, वैसे तकनीक का वो समर्थन करते थे। एक दूसरा उदाहरण दूं, गांधी जी के साथ हमेशा चरखा रहता था, चरखा अपने आप में तकनीक है। 1925-26 का साल है जब गांधी जी ने 1,00,000 रुपए का पुरस्कार

0: घोषित किया था चरखा की तकनीक के विकास पर काम करने के लिए
1: उस समय एक लाख
0: आज के हिसाब से आप सोचिए। और अंबर चरखा कहा जाता है, दिल्ली में राजघाट के पास राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय है वहां वो चरखा रखा हुआ है, 11 पैडल का चरखा है वो। ये गांधी जी के कहने पर खोजा गया। आप सोचिए आज से कोई 102 साल 101 साल पहले 100 साल पहले जिस चरखा में 11 पैडल की चरखा की अंबर चरखा की खोज की उन्होंने बात की और उसको आगे बढ़वाया, वो अपने आप में तकनीक है।
1: और पेटी चरखा भी तभी तैयार हुआ कि
0: ले जा सकते हो सब कुछ जो लैपटॉप की तरह है। तो आप देखिए सारे तकनीक है, बस उनका कहना ये था कि ये सारे तकनीक अधिकाधिक मनुष्यों को काम देने और उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हो। तकनीक इसलिए न हो कि कोई मुनाफाखोर उसका अधिकाधिक हिस्सा ले पा रहा हो और उस देश की उस राष्ट्र की या दुनिया की आबादी के बड़े हिस्से के हाथों को काम से वंचित कर रहा हो। यानी वो तकनीक और मनुष्य के श्रम के संयोजन से एक विकास का मॉडल गढ़ रहे थे
1: और कल्याण की भावना
0: और कल्याण उसमें जो जाहिर है अंतर्निहित है उसमें कल्याण, अंतर्निहित है उसमें प्रेम, अंतर्निहित है सारे हाथों को मिलने वाला काम भी। लेकिन इससे कठिनाई भी नहीं होनी है, जो श्रम कठिन है जैसे जो सिलाई मशीन में या एक चरखा चलाने में जो कठिनाई है और कम उत्पादन है, तो उत्पादकता के बढ़ाने के साथ मनुष्य के हाथों को मिलने वाला काम हम अगर देखेंगे तो दुनिया का कोई भी राष्ट्र कोई भी समाज तभी तो विकसित होगा जब उसके मानव संसाधन को सारे हाथों को काम मिले। तो ये मॉडल दरअसल गांधी जी का मॉडल है और इसमें फिर हमको ये नहीं लगेगा कि हमको आधुनिक तकनीक और गांधी के बीच कोई समन्वय बनानी है। दरअसल गांधी के हिसाब से सारे लोगों की प्रगति के बारे में अगर हमारे मन में चिंता है तो अपने आप हम तकनीक को पुनर्परिभाषित कर लेंगे और उसको संयोजित कर लेंगे।
1: जी, मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी, मौजूदा सरकार जो है वो समाज के विभिन्न तबकों के कल्याण के लिए कार्यरत है, ऐसे में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा या सम्मान या उनके अधिकारों को लेकर क्या हमें गांधीवादी दर्शन से भी कुछ दिशा मिलती है, नीति निर्माताओं को कुछ उससे सीख मिल सकती है?
0: जी बिल्कुल, दरअसल आप देखिए अगर गांधी जी के आश्रमों की बनावट पर गौर करेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि वहाँ हर व्यक्ति को, चाहे वो उस समय का वहाँ का नेता हो या श्रेष्ठ व्यक्ति हो या सामाजिक पदानुक्रम में किसी भी तबके से आता हो, उस सबको संडास की सफाई से लेकर कचरे की सफाई करनी होती थी। दरअसल एक समुदायगत सफाई कर्मचारी की धारणा को गांधी जी ने झकझोर दिया था, हिला दिया था और बड़े स्तर तक तोड़ दिया था
1: जी।
0: फिर भी एक बड़ी कमी रही हमारे यहाँ और सफाई के काम के लोगों के प्रति लंबे समय तक राज और समाज दोनों का रवैया उपेक्षापूर्ण था। अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो रहा है और उस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है जो गांधी जी कभी ख्वाब के तौर पर देखते थे। उसकी सीमाएं बेशक अभी भी होंगी क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है और व्यापक है, पर ये जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं या जो उसमें तकनीक के आविष्कार की चीजें हैं उसको वहां फिर से लागू करने की बातें हैं, उससे बेशक उनके जीवन में भी अंतर तो आया है, उस अंतर को भी स्वीकारना होगा, पर अभी भी उन चुनौतियों या उन सवालों या अभी भी उससे वंचित लोगों के प्रति भी सचेत रहना होगा, राज को भी और समाज को भी, व्यवस्था को भी।
1: जी, और अनेक अवसरों पर हमने देखा भी है कि श्रमजीवी प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया, फिर जिन्होंने श्रमदान किया है स्वेच्छा से ही सही या जिनका वो कार्य है उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो या फिर उनके साथ बैठकर तस्वीरें खिंचवाना हो, तो शायद अपने व्यवहार से भी प्रेरित किया है समाज को कि वो सबको साथ लेकर चले और हर कार्य का एक सम्मान जो है वो अपने व्यवहार में दिखाए। जी राजीव जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, हम कहते हैं कि चाहे हम पर्यटन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या हम अर्थव्यवस्था की बात करें, अपनी शिक्षा की बात करें, सबके मूल में किसी न किसी प्रकार से स्वच्छता है ही, वो इनका केंद्र बिंदु है, कैसे ये सारी चीजें स्वच्छता से जुड़ी हैं?
0: दरअसल हम एक चीज मानते हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है और सृष्टि की सारी चीजें आपस में ऑर्गेनिकली अवयविक रूप से संबद्ध हैं।
1: जी,
0: आप कहीं भी एक चीज, आप इसको ऐसे आप व्यक्ति के शरीर के हिसाब से सोचें तो आप

0: कि किसी भी शरीर के अंग में कोई विच्छेद होता है, कोई दिक्कत आती है, तो पूरे शरीर को उसका कष्ट होता है, हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। वैसे ही सफाई का सवाल हमारे यहाँ लंबे समय तक व्यक्तिगत सवाल माना जाता था। हम अपनी, हमारी जितनी परंपरा थी पूजा पाठ की, व्रत अनुष्ठान की, उसमें ज्यादातर में अपने शरीर की सफाई और अपने घर की सफाई पर बल था। गांधी जी ने चिन्हित किया था कि लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, अपनी सफाई करते हैं और सार्वजनिक स्थलों पर उन गंदगियों को पाट देते हैं। तो दरअसल उन सार्वजनिक स्थलों को वे अपना नहीं समझते, इसीलिए ऐसा करते हैं
1: जी।
0: जबकि ये सारी चीजें आपस में गहरे तौर पर संबद्ध हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इसको उन्होंने समझाया गांधी जी ने, और उसको उन्होंने एक, उनके ही एक बिंब का सहारा लें तो उन्होंने एक सामुद्रिक वलय का सिद्धांत दिया था, जिसमें आप इसको ऐसे समझें कि कोई तालाब का शांत पानी है और आप उसमें कोई कंकड़ फेंकती हैं तो उसमें एक छोटा सा वृत्त बनता है, फिर एक बड़ा वृत्त बनता है, फिर एक बड़ा वृत्त बनता है, फिर एक बड़ा वृत्त, जब तक उसमें करंट है, उसमें ताकत है, वो वृत्त बनता जाता है और सारे वृत्त एक दूसरे के अधीन रहते हैं लेकिन स्वायत्त रहते हैं। तो दरअसल पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि इसी तरह संबद्ध है, व्यक्ति, परिवार, समाज, गांव, गांधी जी जिसको ग्राम स्वराज कहते थे, तालुका, जिला, राज्य, देश और फिर दुनिया, फिर ब्रह्मांड, और ये सारे सवाल आपस में संबद्ध हैं। और अब तो तकनीक ने हम सबको ग्लोबल विलेज कह दिया है, या पुराने समय में हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता रहा है। हम देख रहे हैं कि दुनिया के किसी हिस्से में कोई संकट आ रहा है तो बिल्कुल हजारों मील दूर के हिस्से में भी उस संकट का असर दिखना शुरू हो जा रहा है, और कोविड के प्रश्न के बाद तो ये और भी साफ साफ दिखने लगा है
1: जी।
0: तो गांधी दरअसल बताते थे कि कहीं भी तुम अगर कुछ अन्याय करोगे, कुछ गलत करोगे या सभ्यता के प्रतिकूल कोई काम करोगे तो उसका असर सब पर होगा, जिस पर तत्काल न दिख रहा हो, जो सामर्थ्यवान हो, जो सोचता हो कि हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देर सबेर वो भी उसकी जद में आएगा, उसके असर में आएगा ही
1: जी। बिल्कुल, मैं यहाँ कार्यक्रम में एक म्यूजिकल ब्रेक चाह रही हूँ, आपकी पसंद का गाना श्रोताओं को सुनवाना
0: जी। आदमी और इंसान फिल्म का गीत है
1: जी,
0: जागेगा इंसान जमाना देखेगा
1: जी।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अब कि गांधी जी का एक सादगी का सिद्धांत भी था कि हम जितने सादा रहें उतना अच्छा है। और एक हमारा जेनजी है जो अपने आप को एक ग्लोबल सिटीजन मानता है और दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई नया फैशन आता है तो वो हमारी संस्कृति का हिस्सा भी बनने लगता है या हमारी रोजमर्रा की चीजों में उसकी झलक दिखती है। तो कैसे गांधी जी के ये सिद्धांत हम अपना सकते हैं, कैसे हमारे युवा पीढ़ी को ये प्रभावित कर सकते हैं?
1: दरअसल जिस तत्कालिक चकाचौंध में हमारा जैन जी या युवा पीढ़ी या हम सब लोग इसमें आते हैं, उसके असर में आते हैं, देखना ये है कि उससे हमारा जीवन सहज और सरल हो रहा है या हमारा जीवन और जटिल होता जा रहा है।
0: जी,
1: दरअसल सादगी के सिद्धांत के जरिए गांधी जी स्वावलंबन के दर्शन की प्रस्तावना कर रहे थे कि आप स्वावलंबी हो। तो क्या हम इसके साथ साथ पलट कर ये पूछ सकते हैं कि जो लोग सादगी के सिद्धांत के विपरीत आचरण कर रहे हैं और उनको लगता है कि जो भी ट्रेंड में है वो सारी चीजें हमारे वार्डरोब में होना चाहिए, वे स्वावलंबी भी हैं? और इन सारे ट्रेंड की वजह से क्या उनका जीवन सहज और सरल हो रहा है या उनका जीवन और मुश्किलों से भरा रह रहा है? क्या उनका भविष्य सुरक्षित बन रहा है या उनका भविष्य असुरक्षित होता जा रहा है? वे जो खर्च कर रहे हैं उस खर्च के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ रही है या उनकी मुश्किलें कम हो रही हैं? अगर इन कसौटियों पर देखें तो वो गांधी जी हो या कोई भी पुरखे का विचार हो, वे सबको समझाई देती है कि जिसमें आपको संयम के साथ भोग की बात कही गई है।
0: जी,
1: हमारे यहाँ उपनिषद का एक मंत्र है तेन तक तेन भुंजिक था कि आप उपभोग करें लेकिन उसमें एक संयम भी हो, आप अपने लिमिटेशंस को भी जानते रहें। पहले कहा नहीं जाता था कि आप पांव उतना ही पसारें चादर जितनी लंबी हो।
0: जी,
1: तो दरअसल अगर चादर लंबी नहीं है और पांव पसारते जा रहे हैं तो फिर कर्ज में दबते जा रहे हैं, फिर मुश्किल और अंततः अपना ही जीवन संकट में आ रहा है।
0: जी,
1: तो सादगी के सिद्धांत और सादगी के सौंदर्य की स्थापना करके गांधी जी सबके जीवन को सरल और श्रेष्ठ बनाने की बात करते थे। अब ये चॉइस हमारे आपके या युवा पीढ़ी के हाथ में है कि वो उसमें से क्या चुनता है।
0: जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जब जिक्र किया तो उन्होंने ऐसे अनेक उदाहरण दिए जहां हमारे युवा कहीं गांव का पोखर साफ कर रहे हैं तो कहीं समुद्र से कचरा निकाल रहे हैं, कभी साथ मिलकर जो है वो कचरे को कैसे अलग करना है उसके निपटान की बात कर रहे हैं और इस दिशा में प्रयासरत हैं। आप बताएं कि कैसे ये जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं ये युवा ऊर्जा को एक सही दिशा दिखाती हैं और कैसे ये हमें अपने समाज से बेहतर तरीके से जोड़ती हैं।
1: बिल्कुल, ये बहुत सकारात्मक और खूबसूरत उदाहरण है। आप समझिए कि जिस दौर में ज्यादातर लोग व्यक्तिवादी और अपने बारे में ही सोचने वाले आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं, उसी दौर में एक युवाओं का बड़ा तबका यह भी कर रहा है कि वो प्रकृति और पर्यावरण और सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक संस्थानों या संसाधनों के प्रति वो चिंतित है, सचेत है और उस पर कदम भी बढ़ा रहा है
0: जी।
1: उसको एक्शन में भी लाने की कोशिश कर रहा है और ये उदाहरण तमाम जगहों से, अलग अलग राज्यों का जिक्र किया है माननीय प्रधानमंत्री ने, तो उन सब जगहों से आ भी रहा है
0: जी।
1: और यही बताता है कि दरअसल मनुष्यता की संभावना शेष है। यही बताता है कि समाज में ऐसी सज्जन शक्ति, ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। अब क्या हम जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे दुनियादारी की कसौटी में ऐसे लोग आएंगे, इनको माना जाना चाहिए कि नहीं?

0: दरअसल यही लोग हैं जो दुनिया की चिंता कर रहा हो अपनी चिंता के साथ साथ,
1: जी
0: वही दुनियादार है। हमें दुनियादार की परिभाषा बदलनी होगी और कहना होगा, और प्रैक्टिकल की भी परिभाषा बदलनी होगी। प्रैक्टिकल वही है, अगर हमारे पड़ोस का तालाब साफ नहीं है, हमारे यहाँ पानी का लेवल नीचे जा रहा है, तो हम कैसे प्रैक्टिकल हो सकते हैं? प्रैक्टिकलिटी तो यही
1: जी
0: है, व्यवहारिक बुद्धि तो इसी में है कि हम अपनी पृथ्वी के पानी के स्तर को ठीक रखें, अपने आसपास के तालाब को साफ करें, और चूंकि हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकते, तो अपने ही तरह के लोगों को खोजें या अपने विचार से लोगों को जोड़ें और कारवां बनता चला जाए।
1: जी
0: हम अपने पड़ोस के नदी, पड़ोस के समुद्र को अगर नहीं साफ कर सकते, तो उसका दुष्प्रभाव अंततः हम ही पर पड़ेगा।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: व्यवहारिक होना, दुनियादार होना यही है कि इन सब चीजों से अपने को जोड़ लें। और ये इतना खूबसूरत नजीर है जो बताता है कि उसी समय में जब लोग अपने से दूर देखना नहीं चाहते, सबसे अपने को काट कर देखने का एक दर्शन का अनुपालन कर रहे हैं, उसी समय में ऐसे नौजवान भी हैं, ऐसे
1: जी
0: लोग भी हैं, वो चाहे आंध्र प्रदेश के हों या मध्य प्रदेश के हों या मुंबई के हों,
1: जी
0: जिनका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, वे सब नदी की, तालाब की, बावड़ियों की या समुद्र की सफाई करके अपने को उससे जोड़ रहे हैं, संबद्ध कर
1: जी
0: रहे हैं।
1: और हम वो संस्कृति रहे हैं जहाँ प्राकृतिक उपादानों की पूजा होती रही है। हम आज भी हमारे तीज त्योहारों पर नदी के जल को पूजा जाता है, तो समुद्र मंथन जो है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। तो हमारा ये एक तरह से कर्तव्य भी बनता है कि स्वच्छता से इन्हें जोड़े और इनका देख रेख जो है वो हम जिम्मेदारी से करें। एक और सवाल मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी राजीव जी, जब हम महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा चेहरा हमारे सामने आता है जिसने बहुत सारे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को दिशा भी दिखाई और एक महत्वपूर्ण प्रतीक स्वतंत्रता संग्राम का महात्मा गांधी रहे। आज जब हम उनका जिक्र करते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि विरोध स्वरूप कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का भी नाम लिया जाता है और ये कहा जाता है कि उस दौर में जितना सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, जितनी पहचान मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं एक तुलनात्मक अध्ययन शुरू हो जाता है, बहस शुरू हो जाती है बहुत सारे नामों को लेकर। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर महात्मा गांधी के प्रति सम्मान प्रकट किया जा रहा है तो क्या ये अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रकट नहीं करना है या उनकी अवमानना करना है?
0: हाँ,
1: आप क्या
0: मुझे
1: सोच
0: ऐसा
1: रहे
0: लगता
1: हैं?
0: है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति किया जाने वाला सम्मान किसी के प्रति असम्मान या उनकी अवहेलना या उनका अपमान नहीं है। दरअसल
1: जी
0: वो भारत की आजादी की लड़ाई के कमांडर इन चीफ थे। कमांडर इन चीफ को सबसे अधिक महत्व मिलता ही है। उसके अलावा आप जिन लोगों की चर्चा कर रही हैं, उनका असर उस समय भारत की आबादी के अल्पांश में था।
1: जी
0: चाहे आप जिनका जिक्र करेंगी, अगर आप फिर तुलना करके देखेंगी, तो जिस व्यक्ति का असर उस समय भारत के सबसे ज्यादा लोगों पर था, वो महात्मा गांधी थे।
1: जी
0: तो जाहिर सी बात है, तवज्जो उनको ज्यादा मिलेगी। पर सिर्फ इस वजह से तवज्जो नहीं मिल रही। दरअसल गांधी जी की राष्ट्र की जो कल्पना थी,
1: जी
0: वो उस कल्पना में भारत का विविध समाज और अलग अलग स्तरों में विभक्त या अलग अलग तरह का दिखने वाला समाज का सारा अंग शामिल था। दरअसल गांधी जी किसी एक समाज के प्रतिनिधि नहीं थे, किसी एक समाज के हित की चिंता नहीं कर रहे थे, चाहे वो समाज जाति के आधार पर हो, वर्ण के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो। जाति, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर जो लोग आजादी की लड़ाई में हमारे जो पूर्वज लगे हुए थे, दरअसल वे किसी तबके के प्रतिनिधि के तौर पर थे। गांधी जी इन सबके नेता के तौर पर थे।
1: जी
0: तो कमांडर इन चीफ की, या जिसकी राष्ट्र कल्पना में सारे लोग शामिल हो सकते हैं, सबकी पीड़ा को अधिकाधिक दर्ज किया जा सकता हो, जिसका पाठ इतना व्यापक हो, जिसमें सबकी आवाज को समाहित किया जा सकता हो, और जो इतना सहिष्णु हो, जो अपने से असहमत के साथ भी खुले दिल से बात करने को तैयार हो, और अपने कमी आने पर अपने को सुधारने को भी तैयार हो, जो इतना संवाद धर्मी हो, इसलिए
1: जी
0: इनको सबसे ज्यादा महत्व मिलता है। पर इसका एक कतई मतलब नहीं है कि

0: कि हम अपने बाकी सारे राष्ट्र नायकों को हम पीछे छोड़ रहे हों, इनके सम्मान में उनका अपमान नहीं है। जहां तक बात है भिन्न भिन्न दृष्टियों की, तो ये देखना होगा कौन सी दृष्टि सबसे ज्यादा समावेशी है, कौन भारत की विचार और ज्ञान के महान परंपरा का वाहक है जिसमें सबके लिए जगह है, कौन अधिक करुणामयी है, कौन सर्वाधिक उदार है। और इस कसौटी पर आप देखेंगी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही दिखेंगे। अब एक दूसरी बात मैं यहीं दर्ज कर दूं कि इसके साथ साथ हमारे वो पूर्वज जो क्रांतिकारी धारा के थे, जो हिंसा में यकीन करके आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, दरअसल उनके प्रति भी गांधी जी के यहाँ कोई दुर्भाव नहीं दिखेगा। पर उनको सिर्फ ये लगता था कि हिंसा के आधार पर ना तो आप आजादी पा सकते हैं और ना आप एक नए किस्म की सभ्यता की रचना कर सकते हैं। ताकत के आधार पर ली गई आजादी को निभाने के लिए भी उससे अधिक ताकत की जरूरत पड़ेगी। आप ये भी गौर करिए कि गांधी जी से पहले भी हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने 1857 का युद्ध लड़ा था। 1857 की जो हमारी पहली आजादी की लड़ाई थी या उसके पहले जो हमारे आदिवासी पूर्वजों ने जो आजादी की लड़ाई अपने अपने इलाकों में लड़ी थी, उन सबको कुचलने में अंग्रेजों को बहुत बहुत आसानी हुई। किसी भी दौर में किसी भी सत्ता के लिए अहिंसक संघर्ष, सत्याग्रह के संघर्ष को कुचलना बेहद कठिन है, क्योंकि वहां लड़ने वाला निर्भीक हो जाता है। आप गौर करें, हिंसा के जरिए कोई कार्रवाई करने वाला सत्ता से हमेशा छुपने की बात करता है, पर अहिंसा के जरिए अपनी मांगों पर अडिग निर्भय बनकर उसके सामने खड़ा रहता है, वो अपनी बात कहता रहता है और ताकतवर से ताकतवर सत्ता को झुकना ही पड़ता है, सोचना ही पड़ता है।
1: जी, एक और प्रश्न मैं यहाँ आपसे ये करना चाहूंगी कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से इस समय हर उम्र के श्रोता आपको सुन रहे हैं, ऐसे में अगर हमारे युवा साथियों के मन में ये विचार आए कि वो गांधी स्मृति से जुड़ना चाहते हैं या गांधी दर्शन को समझना चाहते हैं, दर्शन समिति से जुड़ना है, तो कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं और क्या कोई भी व्यवसायी हो या फिर वो छात्र हो वो जुड़ सकते हैं ऐसे?
0: बिल्कुल, गांधी दर्शन और गांधी स्मृति तो दो संस्थान हैं जो दोनों मिलकर फिर एक हुए हैं, वो भारत सरकार के अधीन काम करते हैं, उसकी स्वायत्त संस्थाएं हैं। ये राजघाट के पास है, वहाँ राजघाट बापू की जहाँ समाधि है वहीं पर एक दफ्तर है और दूसरा वहीं पर राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय है जहाँ गांधी जी से जुड़ी हुई सारी वस्तुओं को रखा गया है और जिसको गांधी स्मृति हम कहते हैं, जहां गांधी जी की हत्या की गई थी वो स्थल है। तो उन स्थलों पर अभी भी प्रतिदिन हजारों लोग जाते हैं और वहां किसी किस्म की बंदिश नहीं होती, कुछ एक अवसरों को छोड़कर। जिस दिन वहां भारत के माननीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या दुनिया के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो सुरक्षा कारणों से उस दिन कुछ कुछ अनुशासन रखा जाता है, पर गांधी का विचार तो सबके लिए है, गांधी की फिलॉसफी तो सबके लिए है, उसमें सबके लिए जगह है। दरअसल जो न्याय की कामना रखता है और एक न्यायपूर्ण समाज की रचना की बात करता है, उन सबके लिए उनका रास्ता, उनका दर्शन खुला हुआ है और वे सबके लिए हैं, वे सबके हैं।
1: जी, बहुत अच्छी पंक्ति आपकी ये, वे सबके हैं। कहा जाता है गांधी समसामयिक है, गांधी प्रासंगिक है और गांधी सबके हैं। गांधी चिंतन या गांधी विचारधारा को हम किसी एक कालखंड से नहीं जोड़ सकते, किसी एक घटना से नहीं जोड़ सकते। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज इस कार्यक्रम में हमने बात की बापू के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि की, जो है स्वच्छता, बापू का मूल मंत्र जो कि हमेशा प्रासंगिक रहा है, हर समय हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा, समाज के प्रति हमें अधिक जिम्मेदार बनाता रहा। और अगर ये कहा जाए कि हमें एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाता रहा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ रहे गांधीवादी चिंतक और विचारक डॉक्टर राजीव रंजन गिरी। आप लेखक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साथ ही गांधी स्मृति और दर्शन समिति राजघाट से भी आप जुड़े रहे। गांधी दर्शन की पत्रिका अंतिम जन के आप संपादक रहे हैं। गांधीवाद रहे न रहे, पुरुषार्थ, त्याग और स्वराज सहित कई पुस्तकों के आप संपादक और लेखक रहे हैं। आज कार्यक्रम में बेहद रोचक तरीके से, बेहद ही सादे शब्दों में आपने हमें गांधी दर्शन के बहुत सारे बिंदु जो हैं वो समझाए, जो आज भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो राजीव जी, आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद आपका।
1: तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम से आप सभी से अनुमति लूंगी। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रुकुटी देख, तुम अचल मेखला बन भू की, खींचते काल पर अमिट रेख। तो एक काल पर खींची गई अमिट रेखा हमारे गांधी जी, बापू जी, जिनके विचार हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हमने फिर से इन कुछ विचारों को जिया है। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ, मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। भारत ने पाकिस्तान से जारी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब की फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याह ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर के अदम्य साहस की सराहना की है। श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने एक भयावह घटना होने से बचा ली। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का भी आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैंकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सैंकड़ों की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाया और आजादी की भावना जगाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने ओजस्वी भाषणों और प्रेरणादायी लेखन से लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartruhari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from Lower House and 10 from Upper House, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as the chairperson of Committee on Chemicals and Fertilizers. The Ministry of Education has approved 5 centres of excellence for studies in classical languages. Department of Higher Education has approved the establishment of the 5 centres of excellence for studies in classical Assamese, classical Bengali, classical Marathi, classical Pali and classical Prakrit. Today is the last day of campaigning for the Nandigram and Rajinagar Assembly by-elections. The voting will take place on Tuesday, the 6th of October. Central forces have already started arriving in both the constituencies. Police and central force personnel have begun route marches across villages to ensure security ahead of polling. Ministry of External Affairs has summoned the Charge d'Affaires of Pakistan High Commission to lodge India's strong protest over the continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. India also categorically rejected the baseless and motivated allegations regarding an incident in the Firozpur sector in Punjab along the international border on Friday. Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs PM Setu has completed 1 year today. The PM Setu scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was launched on 4th of October last year. The initiative seeks to strengthen industry-led governance, upgrade training infrastructure and promote demand-driven courses in line with evolving workforce requirements. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smith Machar and Prime Minister Narendra Modi to light the ceremonial flame at Israel's upcoming Independence Day celebrations. During a telephone conversation with Captain Machar, Mr. Netanyahu praised the Indian pilot as a hero of India, Israel and the world for his bravery in foiling a mid-air attack. He also wished Captain Machar a speedy and complete recovery and conveyed his best wishes to the pilot's family.
4: Captain, I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next Independence Day. You are a true hero of the brave peoples of India and Israel, and you are a hero of the entire world. I wish you a very speedy and complete recovery.
3: Prime Minister Narendra Modi has paid tribute to the great revolutionary and freedom fighter Shyamji Krishna Varma on the occasion of his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said, Shyamji Krishna Varma dedicated his entire life for the freedom of India. The Prime Minister added that the nation will forever remember his courage and devotion in safeguarding the honour of the motherland. The IMD has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The IMD said that conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Marathwada and Vidarbh, some more parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Telangana and north interior Karnataka during the next 2 days. The Aichi Nagoya Asian Games 2026 are set to conclude today, bringing more than 2 weeks of exciting sporting action to an end. India has put up an impressive performance at the 20th Asian Games, securing 4th place in the overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. The closing ceremony of the Games will be held in Nagoya, Japan. The event is scheduled to begin at 2:30 p.m. IST. India's women's flag bearer for the closing ceremony has been confirmed as the shooting star Neeru Dhanda, who will proudly carry the tricolour in Nagoya. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the winners of the Asian Games. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 282.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, आइए आज का प्रसारण शुरू करने से पहले मैं आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देती हूँ। आज रविवार है। आज का पहला कार्यक्रम 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम सबरंग, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। एक बज के 10 पर कार्यक्रम गीतिका, 1:40 पर कार्यक्रम शीर्षक संगीत, 2 मिड डे न्यूज, 2:15 पर हिंदी में समाचार, 2:30 पर कार्यक्रम गीत अपना धुन पराई, और इसी के साथ कार्यक्रम का अंत होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना राहत फतेह अली खान की आवाज में। फिल्म का नाम है नमस्ते लंदन।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएफ फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है आज का दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे नोटबुक फिल्म से गीत मोहित चौहान की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं कौशल किशोर ने और संगीत से सजाया है विशाल मिश्रा ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

सैनिक भाइयों, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देती हूँ। कल सोमवार है। कल का पहला कार्यक्रम 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर संगीत माधुरी, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। बज के 10 मिनट पर कार्यक्रम गीत माला, 1:40 पर कार्यक्रम वतन के तराने, 2:00 मिड डे न्यूज, 2:15 पर हिंदी में समाचार, 2:30 पर कार्यक्रम चयनिका, और इसी के साथ कार्यक्रम का अंत होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम है वीर जारा।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना सुनिधि चौहान और जुबिन गर्ग की आवाजों में। फिल्म का नाम है जिंदगी रॉक्स।
1: Oh, yeah.

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना बादशाह फिल्म से, अभिजीत और साथियों की आवाजों में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतिका। सैनिक भाइयों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, अभी का कार्यक्रम आप डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम गीतिका। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कारवां।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है मिले।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम में 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएफ फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शीर्षक संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है आपकी कसम।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर्षक संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, मोहम्मद रफी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है राजकुमार।

0: MD has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. The IMD said that conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from the remaining parts of Marathwada and Vidarbha, some more parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Telangana and North Interior Karnataka during next 2 days. The Met Department said that thunderstorms and lightning conditions will continue over Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met the commander of the United States Indo-Pacific Command, Admiral Samuel Pepero. In a social media post, Dr. Jaishankar said they discussed ways to further strengthen the security partnership and maritime cooperation between India and the United States in the Indo-Pacific region. Yemeni forces claim that Houthi fighters suffered heavy losses on key fronts in Yemen, while Saudi Arabia has rejected a Houthi claim that Riyadh was targeted in a missile and drone attack. As per the media reports, Yemeni armed forces of the internationally recognized government carried out 97 operations against Houthi reinforcements on the Tur al-Baha and Taiz fronts. We have more from our West Asia correspondent.
1: Saudi Arabia has rejected a Houthi claim that Riyadh was targeted in Houthi missile and drone attack. Spokesman for Saudi-led coalition called the claim misleading, saying the Houthis were trying to project an illusory victory and divert attention from losses suffered on key fronts in Yemen. The Houthi military claimed that they had launched missiles and drones at Aramco in Riyadh in response to Saudi attacks on Sana'a and other places in Yemen. They had claimed that they had hit targets and caused fire. Meanwhile, the armed forces of Yemen's internationally recognized government said they carried out 97 operations against Houthi reinforcements in Taiz and Tur al-Baha. They said 260 Houthi fighters were killed or neutralized and 44 military vehicles and supply assets were destroyed or disabled. Manish Shiva for Akashwani News from Dubai.
0: In sports, the curtain falls on the Aichi Nagoya Asian Games 2026 today, bringing more than 2 weeks of action-packed competition across 43 disciplines to an end. India finishes fourth in the overall medal standings. We have a report.
2: The closing ceremony of the 20th Asian Games will be held at Paloma Mizuho Stadium in Nagoya, Japan, beginning at 2:30 p.m. IST. It will feature the traditional closing proceedings, including the grand parade of athletes, the lowering of the Asian Games flag, and the formal handover to the next host city, Doha, Qatar, for the 2030 edition. Proudly carrying the Indian tricolour will be India's women's flag bearer and shooting star, Neeru Dhanda. The double gold medalist will lead India's delegation. India finishes fourth in the overall medal standings behind China, Japan and Korea with an impressive 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. This is India's second largest medal haul in Asian Games history, behind only the record performance at Hangzhou 2023. India's women's hockey team made history by winning gold for the first time since 1982, ending a 44-year wait, while the men's hockey team won back-to-back Asian Games titles for the first time. In archery, India's women's recurve team secured the country's first-ever Asian Games gold in the event, while Kumkum Mohod became the first Indian woman to win individual recurve gold. In golf, Pranavi Urs became India's first women golfer to win an Asian Games gold medal. India's boxing contingent scripted history with 3 gold medals, the nation's first ever triple gold haul in single Asian Games edition. In weightlifting, Mirabai Chanu's silver gave India its first medal in the sport since 1998. India proudly signs off from Aichi Nagoya 2026, etching another glorious chapter into its sporting history. Komati Parekh, Akashwani News, Delhi.
0: Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav today released 2 male great Indian bustards into the wild at Sam in the Desert National Park at Jaisalmer in Rajasthan. In a social media post, the Union Minister said that this landmark success has been made possible by the nearly decade-long unwavering dedication of India's scientists, researchers and ground staff. He added the release marks an important transition in India's Great Indian Bustards Conservation Programme. Mr. Yadav also thanked Prime Minister Narendra Modi for his support in enabling the scientific community to work towards the conservation. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Journey of Viksit Bharat will be built on strength of India's institutes, MSMEs and startups, says Vice President C.P. Radhakrishnan. In West Bengal, campaigning ends today for Nandigram Rejinagar Assembly by-elections. PM Setu scheme aiming to transform industrial training institutes completes 1 year. IMD forecasts heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Yemen confirms strikes against Houthi-controlled areas in Sana'a and Sada. Houthi claims missile and drone attack targeting Aramco facilities in Riyadh. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan. India secures fourth place in overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
4: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
3: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
6: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
7: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
6: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
3: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉ त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: अपडेट रहे, आगे रहे expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
3: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
1: हूती विद्रोहियों के रियाद पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तईस और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
3: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
9: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम माहे

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत अपना धुन पराई। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना अभिजीत की आवाज में। फिल्म का नाम है यस बॉस।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत अपना धुन पराई। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना नीरज श्रीधर की आवाज में। फिल्म का नाम है लव आजकल।

इसी के साथ गीत अपना धुन पराई कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सैनिक भाइयों, आज का प्रसारण भी यही समाप्त होता है। अभी से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रेनबो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनंदा तिवारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, आज के इस रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं शालिनी मित्तल और आज का कार्यक्रम किस विषय पर है जानना चाहते हैं ना आप? तो बिल्कुल, ये विषय और भी खास इसलिए क्योंकि आज एक खास दिवस है। आज है वर्ल्ड एनिमल डे। और वर्ल्ड एनिमल डे क्या होता है, क्यों मनाया जाता है और एनिमल्स क्यों हमारे लिए जरूरी है, सारी बातें कोशिश करेंगे अपने सभी श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। इतना बताना चाहूंगी कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे या विश्व पशु कल्याण दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि जानवरों के कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिन लोगों को जानवरों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस दिन को विश्व पशु दिवस या विश्व पशु संरक्षण दिवस के रूप में जाना जाता है और इस दिन को पशु प्रेमी दिवस के रूप में भी कहा जाता है क्योंकि ये पशु अधिकारों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और संगठनों का समर्थन करके जानवरों के प्यार, देखभाल, स्नेह और सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। तो आज वर्ल्ड एनिमल डे पर हम जो काम इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि अपने श्रोताओं को जागरूक करें और बताएं कि जानवर भी उतना ही जीने का हक रखते हैं जितना हम लोग रखते हैं। द वर्ल्ड इज देयर होम टू, ये जो संसार है ये उनका भी घर है तो उनको भी जीने का उतना ही हक है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, रेडियो डॉक्टर बनकर हमारे साथ रहेंगे इस कार्यक्रम में। आपका तारुफ करा दूं, आज हमारे साथ है वेटरनरी डॉक्टर डॉक्टर आर टी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। और इस खास विषय पर हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी पार्टिसिपेट करें और अगर वो कुछ बताना चाहते हैं जानवरों के साथ उनकी कोई ऐसी मेमोरी है या उन्होंने पाल रखा है या इससे रिलेटेड उनके जो विचार हैं, जो भी समस्या भी हो सकती है किसी की कुछ उससे रिलेटेड, वो सारी आज सॉल्व हो सकती है क्योंकि डॉक्टर साहब जानवरों को बहुत करीब से जानते हैं।
2: देखिए, आजकल की लाइफ में हम लोग इतना बिजी हो गए हैं, हम एक ऑफिस से अपने बेडरूम से ऑफिस, इसमें हम सब भूल गए कि ये एनिमल भी एक इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक ह्यूमन बींग या प्लांट्स हैं। तो इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है एज ए कंपेनियन, बिकॉज बहुत हमारे एनिमल लवर्स हैं जो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर एक एनिमल उनके घर में एज ए पेट रखा है, जैसे कोई डॉग या कैट या कोई स्क्विरल या कोई बर्ड और रैबिट जो कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो स्ट्रेस आपका ब्रेक करते हैं जब आप ऑफिस से आते हैं, बाहर से आते हैं, या वो लव जो विच यू लॉस्ट इन योर बिजी लाइफ, वो जो पार्ट लाइक प्ले करते हैं, मुझे लगता है वो आपको इतना डिस्ट्रेस करते हैं कि आप एकदम रिचार्ज हो जाते हो जैसे आप अपने रात को फोन चार्ज करते हो। तो ऐसे मीन आप यू आर अगेन रेडी फॉर द वर्क एंड आप उतना पोटेंशियल ज्यादा दे पाते हो अगर इफ यू आर एनिमल लवर, इफ यू स्पेंड योर ऑफ टाइम विद योर पेट्स एंड कम्युनिकेट योर स्ट्रेस एंड योर हैप्पीनेस विद योर एनिमल्स। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए तो है ही है लेकिन ह्यूमन की हेल्थ और उसकी इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कम से कम लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि दे आर, डोंट फॉरगेट देम, दे आर द इक्वली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स बिकॉज दिस बिलोंग्स टू देम आल्सो।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब और हमारे श्रोता आप समझ ही गए होंगे कि आज इस कार्यक्रम में यानी रेडियो डॉक्टर में हम आपसे क्यों बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत सही बात आपने बोली कि ह्यूमन हेल्थ इससे बहुत डायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि एनिमल्स जब हमारे अराउंड रहते हैं, एक तो इकोलॉजी तो है ही पर दूसरा डी स्ट्रेस, आपने कहा कि डी स्ट्रेस करने के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम है और

कोशिश करनी चाहिए कि फोन और जो हम रील्स के माध्यम से अपने को कोशिश करते हैं वो डिस्ट्रेस नहीं होता, इनफैक्ट हमें और स्ट्रेसफुल बनाता है। तो स्ट्रेस हमें जो है बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है, तो अगर हम डिस्ट्रेस रहेंगे तो एक अच्छा जरिया है, हम उनकी देखभाल भी करें और वो इंटर्न हमें प्यार तो देते ही है, साथ ही हमारी सारी चिंताओं को भी हर लेते हैं। तो एक प्यारा सा गीत हम सबसे पहले कार्यक्रम में सुनेंगे डॉक्टर साहब, और अपने श्रोताओं से ये अनुरोध करेंगे कि आप विषय समझ गए होंगे, आज हम बात कर रहे हैं एनिमल वेलफेयर पर, और अगर आपको भी कुछ कहना है, आपकी कोई ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि हम सबके साथ शेयर करें और वो एनिमल से रिलेटेड है, और कोई ऐसी समस्या है जिसका आपको सामना करना पड़ रहा है अपने पेट रिलेटेड, या कोई और भी ऐसी चीज है जो आप जानना चाहते हैं डॉक्टर आरटी शर्मा से, तो जरूर यहां जुड़िए और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और वापस आइए, हमारे साथ रहिए इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं हम एनिमल वेलफेयर के बारे में। हमारे लिए सोचना बहुत जरूरी है, ये चाहते हैं ये बात हर श्रोता तक पहुंचे। और जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा, हमारी तरह जानवर भी प्यार, खुशी, डर, दर्द महसूस करते हैं, लेकिन वे बोले गए शब्दों को समझ नहीं पाते ठीक से। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी बात समझें, उनको समझें, उनकी समस्या को समझें और ये सुनिश्चित करें कि उनकी भलाई और उनका जीवन जो है वो भी सुरक्षित रहे, सम्मान की जिंदगी उनको भी हम दे सकें। तो ये बहुत जरूरी बात है। हमारी श्रोता डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बताना चाहेंगे कि डॉक्टर आरटी शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में हैं और इस कार्यक्रम में रहेंगे। आप वेटरनरी डॉक्टर हैं और बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, इनको बहुत इस विषय में जानकारी है, तो जरूर आपकी जो भी समस्या है उसका जवाब डॉक्टर साहब दे पाएंगे। तो हम सुन लेते हैं कि समस्या। हेलो
1: हेलो
0: जी जी, आप हैं रेडियो डॉक्टर जी? नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार जी,
1: मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
2: हाँ जी बोलिए।
1: हाँ जी डॉक्टर साहब, पेट के लिए

0: केयर भी बहुत जरूरी है, जैसे हम माँ अपने बच्चों की करती है, अगर पेट हमने रखा है तो हमें उसकी केयर अपने बच्चे की तरह ही करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सोच है
2: आपका। बिल्कुल, बहुत सही बात
0: और
2: है।
0: दूसरी बात यह है कि देखिए शहरों में तो हम डॉग रख लेते हैं, कर लेते हैं, आप गांव में जाइए, जब लड़की जैसे विदा होती है तो गाय के गले मिल मिल के रोती है
1: बिल्कुल,
0: कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। पर शहरों में जो हमारे ये कूड़ा करकट जब गाय खाके मरती है तो बहुत दुख लगता है कि पॉलिथिन खा रही है बेचारी, कुछ खा रही है। एक मेरे को लगता है कि कोई और एसोसिएशन ऐसी भी होनी चाहिए जो ये कूड़े की ओर से ध्यान रख करे, ध्यान कि पशु ना मरे उस।
2: बिल्कुल, बहुत सही बात।
0: पशु मर रहे हैं।
2: जी जी,
1: वी कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट ये है कि इंसान अब इतना सेल्फिश हो गया है कि उसको आसपास कुछ गंद दिखता नहीं है, एक्सेप्ट मेकिंग हिज ओन लाइफ कंफर्टेबल। तो इसलिए वो हमें थोड़ा सा अपने आप को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, बिकॉज सराउंडिंग्स जो हैं वो हमें ही मेंटेन करनी है। गंद भी हम ही डालते हैं, कचरा भी हम ही डालते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वो
0: देखिए कुत्ते जो हैं बेचारे लावारिस जिनको कहते हैं हम, कई बार वो यहाँ मरे होते हैं हमारे आसपास, उनके जब होता है अंदर से कीड़े निकलते हैं, पॉलिथिन निकलते हैं ढेरों ढेर। हम लोग शांत तो वो जानवर है बेचारे जो हमें देखते हैं, भालते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग इंसानियत ही छोड़
2: बिल्कुल सही बात कही है मिसेस बेरी आपने। और ये एक छोटा सा प्रयास है रेडियो डॉक्टर का, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश पहुंचाएं कि हमारी स्वास्थ्य की आवश्यकता है, पर हमारे साथ जो पशु रहते हैं उनका स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
0: देखिए शालिनी जी, हम कहते हैं ना दूध में कंटेमिनेशन आ गई है, क्यों आई है? क्योंकि हम लोग पॉलिथिन फेंकते हैं झड़ले से, वो खाती है और दूध में जहर बन रहा है।
2: बिल्कुल सही बात। जरूरत क्यों पड़ती है स्वच्छता पखवाड़ा मनाने की? इसीलिए क्योंकि हम, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, वी आर नॉट सेंसिटाइज्ड, हमें इस चीज के का एहसास होना चाहिए। ये एहसास नहीं, ये एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब?
0: वे ऑफ लाइफ होना चाहिए कि अगर हम, देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम कोई चीज खाते हैं पॉइजन हो जाता है, तो उसी तरह वो जो एनिमल है बोल नहीं सकता, तो क्या उसको हम पॉइजन देते
1: हैं? हम लोग सोचते हैं कि जब बच्चे को हम परवरिश करते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल एक कोर्स भी होना चाहिए, हाउ टू बी ए गुड सिटीजन। आप हिस्ट्री और मैथ पढ़ा देने से उसका उतना कैलिबर नहीं बनता जितना एक सोशल एंगल में एक बच्चे की ग्रोथ होती है। तो ही शुड अंडरस्टैंड, शुड बी सेंसिटाइज टू द सराउंडिंग एरियाज। लाइक आप,
0: हमारी बात तो कोई समझेगा नहीं, एक बार आप मैसेज स्प्रेड करेंगे तो शायद
2: आज पूरे कार्यक्रम में
1: आज हम लोग यही कर रहे हैं। हो सकता है
2: करने वाले हैं।
1: कोई नए नए कॉलेज में या स्कूल में जो ये सिलेबस बनाते हैं, तो शायद एक सब्जेक्ट ऐसा रख लें, हाउ टू बी ए गुड सिटीजन। तो हम लोग अगर बच्चों को ये सिखाना शुरू करें तो मुझे लगता है आने वाली नेक्स्ट जनरेशन विल बी मोर सेंसिटाइज देन द प्रेजेंट वन।
2: बिल्कुल सही बात है। पर डॉक्टर साहब, एक ये बात भी सही है कि हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे वो सीखते हैं। तो ये तो आने वाली जनरेशन में जो है, ये आपने बोला कि पढ़ के वो सीखे, पर हम जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं एडल्ट, वो अपने आप को बदल सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास।
1: बिल्कुल
2: बदलते।
1: मैं तो ये बोल रहा हूँ, मेरी दादी को मैंने देखा है कि बहुत, जब खाना बनाती थी सबसे पहले एक चपाती निकाल के रखती थी, वो बोल रही ये गाय को देनी है, एक चपाती वो चिड़िया के लिए बाहर रखती थी। तो वो एक बहुत अच्छा सोच था, वो कितना कंसर्न था फॉर द बर्ड एंड फॉर द एनिमल। अगर एक इंसान, एक फैमिली ऐसा करे तो कितना अच्छा हम कर सकते हैं। बट वो आजकल की फास्ट लाइफ में और मोबाइल की लाइफ में ये सब चीजें भूलते जा रहे हैं। आज तो खुद खाना भी आप ऑनलाइन ही मंगवाते हो, तो घर में बनाते ही नहीं। तो दैट काइंड ऑफ ए कल्चर वी हैव टू चेंज एंड सेंसिटाइज आवर चिल्ड्रन।
2: वेरी राइटली सेड। और डॉक्टर साहब, कुछ मैसेजेस भी हमारे पास आ गए हैं। हमें सागर जी ने लिखकर भेजा है, विजयपुरा कर्नाटका से, 25 साल के हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे दो क्वेश्चन हैं कि अगर हमें कोई जानवर दिखता है स्ट्रीट पर जो कि इंजर्ड है, तो हमें क्या करना चाहिए और इस सिचुएशन को हम कैसे उसको बचा कैसे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक इनका और है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो स्ट्रीट पे एनिमल्स होते हैं या पेट एनिमल्स भी होते हैं, उनको कुछ बीमारियां हो जाती है, उनसे वो स्प्रेड होती हैं, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं? एंड ही इज थैंकिंग अस फॉर दिस अमेजिंग प्रोग्राम।
1: थैंक यू सर फॉर योर कंसर्न, बट बात यह है कि आपके एरिया में, जिस एरिया में भी आप हो, वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसेज हैं, जो आप ऑनलाइन उनके नंबर्स देख सकते हो। हर टाउन में, हर सिटी में एनिमल वेलफेयर बोर्ड के लाइक स्मॉल ये एसोसिएशन होती हैं, जो गवर्नमेंट रन रहती हैं, जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी होती हैं, उनके नंबर आप ऑनलाइन ढूंढ लीजिए।

0: कॉर्पोरेशन के ढूंढ लीजिए, ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से हॉस्पिटल हैं जो हमारे होमलेस एनिमल्स के लिए उनकी अलग से हेल्पलाइंस हैं, तो वो अगर आप लकी हैं उस एरिया में अगर ऐसा मिल जाता तो आप सबसे पहले उनको कांटेक्ट कर लीजिए। और अगर कोई एक्सीडेंटल एनिमल है सबसे पहले उसको सड़क से एक ऐसे रॉ हैंड से नहीं पकड़ें, बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन द पेन। आप अगर वो एक्सीडेंटल एनिमल या डॉग को अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं लेकिन वो ही कैन बाइट यू इन दैट कंडीशन, तो आप एक टॉवल या कोई चद्दर उसके ऊपर फेंक के उसको साइड में रख सकते हैं कि दूसरी गाड़ी उसको फर्दर इंजर नहीं करे। और वो सबसे पहला स्टेप है, कोई ब्लीडिंग हो रहा है तो आप उसको स्टॉप करने की कोशिश करें। आसपास के नियरेस्ट कोई वेटनेरियन है या एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उनको फोन करें। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के पास आजकल एम्बुलेंसेज हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं, तो आप उनको कॉल करें। तो जो कंसर्न लाइक कंपैशनेट एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। सेकेंडली, बहुत सी ऐसी डिजीजेज हैं, जेनेटिकल डिजीजेज, जो कि कम्युनिकेबल हैं फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, जैसे लेप्टोस्पायरा है और रेबीज है, स्किन डिजीजेज हैं। तो ऐसे में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जैसे रेबीज, टू बी फ्रैंक, बहुत से लोग डॉग से इसलिए डरते हैं, उनको लगता है डॉग मीन रेबीज, ऐसा नहीं है। डॉग्स दे आर नॉट बॉर्न विद द रेबीज। रेबीज एक अलग डिजीज है, जब वो वायरल इन्फेक्शन है, जब किसी को होती है तो उसको उसके सलाइवा में वो वायरस शेड होने लगता है, वो भी 10th या 15th डे, तो तब वो किसी को बाइट करे तब रेबीज होती है। ऐसे अगर नॉर्मल डॉग के लिए अगर उसका लिक जा कर ले या बाइट कर ले तो रेबीज नहीं होती। तो बहुत से लोग डॉग से इसलिए डरते हैं या हेट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक कंसेप्ट अपने मन से निकाल दीजिए कि हर डॉग रेबीड होता है। और सेकेंडली, अगर रेबीड होगा तो वो अपनी कॉलोनी में नहीं रहेगा, वो चलता फिरता रहता है, इनकोऑर्डिनेशन होता है, जॉ उसका हैंग करने लगता है, स्लाइवेशन होती है। तो ऐसा डॉग अगर आपको नजर आए तो आप आसपास की ऑर्गेनाइजेशन, जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उनको फोन कर सकते हैं, किसी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, पर उसको मारे नहीं या भगाए नहीं, क्योंकि अगर वो उस टेरिटरी से निकल गया तो वो दूसरे डॉग्स को काटेगा, फिर ऐसे डिजीज कैन बी स्प्रेड इन दैट एरिया। एक वो आप कर सकते हैं। सेकेंडली, लेप्टोस्पायरा है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो यूरिन से थ्रू होती है, तो ऐसा आप अपने RWA जो है उनको बता सकते हैं कि वो अपने जो मेंबर्स हैं, जो अपने रेजिडेंट्स हैं, उनको एक सर्कुलर भेजे लेप्टोस्पायरा कैसे स्प्रेड होती है। तो वो ये सब अवेयरनेस कैंपेन से ही होगा। और स्किन डिजीजेज हैं जैसे डेमोडिक है या स्केबीज है, जो ह्यूमन को हो जाती है अपने पेट से, बट वो आपका डॉक्टर ही बताएगा। अगर आपको लगता है आपके डॉग के या कैट है जो उसके बाल गिर रहे हैं या स्क्रैच कर रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा दें, तो वो एक बार डायग्नोज कर देंगे वेदर इट्स स्केबीज या डेमोडिक है या सिंपल एलर्जी है। अगर स्केबीज है तो देन यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज दिस इज कंटेजियस, बट अगर डॉग को आप ट्रीट कर देंगे तो एंड दिस इज क्योरेबल डिजीज। अगर आप अवेयर हैं इस बात के और अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोज कर लेते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती। तो ये तीन चार चीजें ऐसी हैं जो आप अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐसी चीजें स्प्रेड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एनी जॉक्स। तो आई थिंक दैट बी वेरी गुड स्टेप यू कैन टेक।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपके माध्यम से मिली हमारे श्रोताओं को। और जैसा आपने कहा, इस जानकारी को आप जितना स्प्रेड करना चाहें करिए, और ये कार्यक्रम जो है हमारा जन जन तक पहुंच रहा है, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी इसको सुना जाता है और बहुत पॉपुलर है हमारा प्रोग्राम। तो यही गुजारिश रहेगी कि इस बात को जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ध्यान से सुने और अपने जानने वालों तक पहुंचाएं। हमारे एक श्रोता और वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो,
2: रामवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहे हैं।
1: जी रामवीर गांधी जी, बताएं।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: जैसे कि हम लोग स्ट्रीट डॉग को देखते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं तो उनके जो टिक्स काफी हम देखते हैं, हम उनके हेल्प करने की कोशिश करते हैं पर लगता है काट ना ले। और वैसे तो हमने दवाई तो ले रखी है, फिर भी हम उसको स्प्रे मारते हैं, फिर भी वो टिक्स उसके रह जाती है। कोई हमें ये समझ नहीं आता डॉग काटे ना और हम उसकी हेल्दी कर दें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे पास दो डॉग हैं, एक के बाल हैं, एक के ज्यादा बाल नहीं है। तो बाल वाला डॉग जो है हमारा कम खाता है, टॉय ब्रीड है, और दूसरा डॉग आराम से खा लेता है। क्या गर्मी के कारण वो ऐसा बिहेव करता है? और तीसरा एक सवाल मेरा बहुत ही पुराना है कि पहले भी मैंने कम से कम 20 साल पहले ये बात पूछी थी। एक डॉग था मेरे पास डोमर में, तो वो क्या था, एक फिल्म का सॉन्ग जैसे ही चालू होता था उसके म्यूजिक की दो लाइनें आती थी, तो वो कहीं भी होगा, फोर्थ फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे, तो तुरंत वहां पहुंचता था, सुनता था 5 सेकंड वो लाइनें।

0: उसके बाद वो अपना बिहेव दिखाता था, वो करने लगता था, तो उसकी ये हमें समझ नहीं आई ये वो क्या उसको प्रॉब्लम थी या कोई अच्छी बात थी। फिर हमने अपने फ्रेंड को बताया, फ्रेंड ने भी कहा टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट किया, फिर हमें लगा कि इसके अंदर कोई ऐसी परेशानी है, ये समझता है, ये परेशान होता है, तो हमने वो गाना बजाना ही बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल सपोई को बोल दिया ऐसा मत करे।
1: चलिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको सारी बातें।
2: देखिए एक जो टिक्स का आपने बोला, वो टिक्स आज हमारे ट्रॉपिकल कंडीशन ऐसी कंट्री में जब रेनी वेदर होता है, ये डॉग एक द होस्ट इन देयर लाइफ साइकिल, तो वो इनके ऊपर ब्रीड करते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर वो दूसरे डॉग पे चले जाते हैं, ऐसे स्प्रेड होते रहते हैं उस एरिया में। तो आप बिकॉज दिस इज फॉर ए होमलेस डॉग, तो मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ, नियोमैक के नाम से एक टेबलेट आती है 10 mg की, वो हफ्ते में एक बार दे दिया करें इनको।
1: तो ये right? क्योंकि ये स्ट्रे डॉग की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इनको किस तरह से देंगे, इनको डर भी लगता है ना कि
2: वो खाना अगर आप देते हैं जो कोई एग बॉयल करके उसकी मैश करके अच्छा, उसमें डाल दें, या किसी पनीर में डाल के दे सकते हैं, किसी बिस्किट में डाल के दे सकते हैं, 3 या 4 हफ्ते दें तो वो टिक्स नहीं आते।
0: कितने टाइम तक नहीं आएंगे अगर 3-4 बार?
2: तो कम से कम एक सीजन नहीं आते सर, 5-6 महीने तक नहीं आते। विंटर में टिक्स नहीं होते, ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, आपके एरिया में जहां भी ये रह रहे हैं वो दीवारों में पेड़ों में वो चले जाते हैं, वो हाइबरनेशन में रहते हैं। एक बार ब्लड सक करने के बाद दे कैन सर्वाइव फॉर 3-4 ईयर्स। तो दोबारा जब होस्ट उनको मिलता है, रेनी वेदर होता है, उनका ब्रीडिंग टाइम आता है, फिर वो हमारे पेट्स पे आ जाते हैं, ब्रीड करते हैं, तो ये ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो इसलिए अगर आप जैसे जून में या जुलाई से शुरू कर दें, रेनी वेदर से पहले ही दे दें, तो वो मेडिसिन इनकी स्किन की ब्लड वेसल्स है उसमें रहती है, जैसे ही टिक उसको ब्लड सक करते हैं दे डाई, उनका नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये आप एक रेगुलर अगर आप करते रहें तो वो हम लोग रेडिकेट कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास एक हेयरी डॉग है, एक नॉन हेयरी है, जो लेस हेयरी है, तो हेयर के थ्रू उनको कोई ठंड या गर्मी नहीं लगती है, कि ये कंसेप्ट है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्वेट ग्लैंड्स, इनको पसीना नहीं आता, तो ये जो इंसुलेशन का काम करती हैं, गर्मी में उनको ठंडा रखती हैं, ठंडी में इनको गर्म रखती हैं। तो अगर डॉग खाना नहीं खा रहा, देयर मे बी सम अदर मेडिकल रीजन, तो आप डॉक्टर को दिखा लें, हो सकता है वो ब्लड टेस्ट करें, कुछ लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमारे डॉग्स को भी कार्डियक प्रॉब्लम होती है, किडनी प्रॉब्लम होती है, लिवर प्रॉब्लम होती है, तो एक ये चेक कर लें, और हेयर के कारण उनका लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं होता। तीसरी आपकी बात, आपने बोला एक सॉन्ग, पर्टिकुलर सॉन्ग को डॉग उसके साथ गाना गाता है, तो दैट मीन योर डॉग इज वेरी हैप्पी। आपने कभी देखा होगा अगर रेलवे ट्रैक के पास आप रहते हैं, जब कोई डॉग है कभी उनके इंजन की वो हॉर्न बजाता है, तो साथ साथ वो खुद ऐसे हाउल करने लगते हैं, बिकॉज दे लाइक दैट साउंड, इसलिए वो ऐसा करते हैं।
1: तो बंद कर दिया उसको गाना
2: बट लेकिन आप फॉर योर डॉग वॉज इंजॉइंग दैट डॉग, इसीलिए तो वो पास में आ रहा था, वो आके गाना गाना चाहता है उसके साथ। आप हस्की देखें, वो तो गाना गाते हैं प्रॉपर, आपने यूट्यूब में बहुत से ऐसे देखे होंगे जो म्यूजिक बजाते हैं, वो साथ में गाते हैं, तो दे ऑल्सो इंजॉय म्यूजिक, म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, तो वो इसलिए उसको बंद नहीं करना था, आपने उसको और उसको एंजॉय करने देना,
1: तो आप दोबारा शुरू कर दें वो गीत, क्योंकि आपको तो पता है कौन सा गीत वो एंजॉय करता है, तो प्लीज उसको, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे हैं पर वो कन्वे कर रहे हैं,
2: दे लाइक दैट पिच एक्चुअली, उनको वो फ्लो अच्छा लगता है, तो देन दे स्टार्ट डूइंग दैट।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमें मैसेज के जरिए मनोहर लाल गांधी जी ने लिखा है चाणक्य चौक गाजियाबाद से, कि हम सुबह उठते ही एक काम जरूर करते हैं, वो है चिड़िया और पक्षियों को दाना डालना, चिड़िया खाती है वही हम खिलाते हैं, हमारे यहाँ तरह तरह की चिड़िया आती भी हैं। डॉक्टर साहब से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या क्या खाने की चीज है जो चिड़िया को पसंद है, ताकि हम उसको एक वैरायटी दे सके। नमस्कार भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब आपको।
2: नमस्कार सर, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम लोग तो बोलते हैं कि एक पानी का बर्तन आप छत पे रखिए, एक पानी का बर्तन आप अपने दरवाजे के बाहर रखिए ग्राउंड फ्लोर पे, एंड डॉग्स के लिए और बर्ड्स के लिए, बिकॉज यही कमी होती जा रही है, जितने मेट्रोज हैं वहाँ नाली से पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस हो रही हैं, तो अगर हर फैमिली एक पानी का बर्तन घर के ऊपर छत पे रखे, तो बहुत से बर्ड्स दे कैन सर्वाइव, क्यों उनको पानी नहीं, स्पेशली इन द समर, उसमें आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोल डाल सकते हैं, ए पिंच ऑफ इलेक्ट्रोल इन द वाटर, और आप सीड रख सकते हैं, कंगनी है, बाजरा है, चपाती रख सकते हैं, मीठा ज्यादा नहीं रखें, और ये बर्ड्स बहुत अच्छी दे एंजॉय ऑल दिस थिंग। और पानी में इलेक्ट्रोड डाल देने से जो पीक समर होता है उसमें उनको लाइक हाइड्रेशन रहती है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कोई वायर पे एनिमल बैठा है या पेड़ पे बैठा है, वो सडनली दे शॉक से नीचे गिर जाते हैं। बहुत से ऐसे हमारे पास लोग लेके आते हैं, कोई पिजन है, कोई पैरट है, तो उनको डिहाइड्रेशन हो रहा है और शॉक हो रहा है बिकॉज द हीट। तो अगर हम लोग ये सारा करें, इतना अर्बनाइजेशन हो गया है कि बर्ड हमारे कहाँ जाएंगे, एलिमिनेशन भी होता जा रहा है। आप वो ब्राउन कलर की स्पैरो होती हैं वो देखिए, हमारे अभी सिटी में मिलती ही नहीं है, जो गांव में जाते हैं तो उनकी नेस्ट होता है वो कितना चिरपी होती है। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, तो वो भी इकोलॉजिकली बैलेंस करती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है अगर आप ये कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा इनकरेज करिए, और आपकी कॉलोनी ऐसा करने लग गई तो मुझे लगता है सारा सिटी भी ऐसा करने लगेगा, तो बहुत से बर्ड्स जो खत्म होते जा रहे हैं जिनकी स्पीसीज, वो भी दोबारा रिवाइव होती जाएंगी।
1: जी जी, एक श्रोता अपने समस्या के साथ है, कुछ कहना चाहते हैं। हेलो
3: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी,
3: मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ।
1: जी जी
2: यस सर,
3: आपको नमस्कार करता हूँ
1: जी।
3: मेरा प्रश्न ये है कि जो कुत्ता है, डॉग है, उसे बहुत अच्छी तरीके से जो बचपन से उसको ले आते हैं, खरीद के ले आते हैं, इंग्लिश ले आते हैं, और अपने जो बच्चे गली में देती हैं उसको भी उठा, उसको भी ले आते हैं, अच्छे सुंदर बच्चे होते हैं जो, तो डॉगी जो है वो नॉन वेज 90% होता है, नॉन वेज होता है। अब बच्चा क्या है, उसको खिलाएगा, अपनी गोदी में रखेगा, उसमें उंगली डालेगा उसके मुंह में, उसको अपने हाथ से खिलाएगा, छोटा बच्चा 3-4 साल का, और खुद वो उंगली अपने मुंह में भी डाल लेता है, तो क्या उससे उस बच्चे को नुकसान हो सकता, नहीं हो सकता, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो बच्चा है कुत्ता जो डॉगी है, उसको निलाने के लिए कितने दिन में निलाना चाहिए, और किस चीज से निलाना चाहिए जिससे उसके अंदर जर्म ना हो।
2: देखिए सर, मुझे लगता है आपने अभी नया नया, जो आपके बच्चों ने नया पप अडॉप्ट किया है, और आपको ये बता दूं कि डॉग ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं। आप जैसा उसको खिलाएंगे दे आर हैप्पी विद दैट। आप वेजिटेरियन खाना दे सकते हैं, नॉन वेज में सिर्फ मीट या चिकन या फिश मिलता है, लेकिन वेजिटेरियन डॉग के पास बहुत सी चॉइस है, वो पनीर भी खाता है, वेजिटेबल भी खाता है, राइस, चपाती, बहुत सी चीजें उसके लिए हैं, तो वो आप उसको वेजिटेरियन भी बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके मुंह में हाथ डाल देने से, अगर अपने मुंह में डाल लेंगे तो ऐसा, वो डिफरेंट स्पीसीज है। अगर आपका डॉग वैक्सीनेटेड है और कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ नहीं होता, ये आप मिथ है। और ऐसे डॉग से इंसान को कम्युनिकेबल डिजीजेस जो लिमिटेड हैं, अगर उसको प्रिवेंट करेंगे तो आपके घर में जो पेट रह रहा है, जो आपके बच्चे उसके साथ ग्रो करेंगे, उनका जो बिहेवियर है आने वाले टाइम में 15 साल बाद, यू विल फाइंड दे विल बी मोर कंपैशनेट। जो आजकल की सोसाइटी बड़ी आइसोलेटेड और सेल्फिश होती जा रही है, उनके लिए तो पप रखना, डॉग रखना बच्चों के साथ बहुत ही जरूरी है। जो आप अगर सोशली आप एक्सेप्टेबल हैं तो मुझे लगता है आपके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा होंगे, आप खुश भी ज्यादा रहेंगे। आइसोलेटेड रहेंगे तो आप स्ट्रेस में रहेंगे, ज्यादा दवाइयां खाएंगे, लाइफ टाइम भी बहुत शॉर्ट रहेगा। तो इसलिए जो पप रख रहे हैं, जब बच्चे लेके आ रहे हैं, उनको आप एनकरेज करिए, उनके फ्रेंड्स को भी बोलिए आप डॉग जरूर लेके आए। बाकी अग्रेशन डॉग का है, वो इंसान से ज्यादा तो अग्रेशन नहीं है उनका। कुछ डॉग जो मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप बना दिया कि उनको काटा, बच्चों को लेके आया, पर डॉग बिना मतलब कभी नहीं काटता। आप स्ट्रे डॉग देख लीजिए, कुछ कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो अल्फा डॉग्स हैं, जिनको हालांकि गवर्नमेंट ने स्टरलाइज किया है, बट वो हमारी वो इलिटरेसी है, जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पा रहे। जो डॉग है वो टेरिटोरियल होते हैं, तो उसको अगर हम लोग अग्रेसिव डॉग है उसको उस टेरिटरी से नहीं हटा सकते, लेकिन उसका फीडिंग जो एरिया है वो थोड़ा दूर कर दीजिए, अपने घर के पास नहीं करें, अपनी स्टेप्स पे आसपास नहीं करें, बिकॉज आप ही एनिमल लवर हैं, ऐसा है जरूर, लेकिन बहुत से लोग एनिमल लवर नहीं है जब, बट दे डोंट लाइक एनिमल्स, तो वो स्टेप्स से सीढ़ियों से चढ़ने में भी डरते हैं, अगर डॉग आपका बाहर बैठा आप खाना देते जाए।
1: यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि उनकी एक डेजिग्नेटेड प्लेस होनी चाहिए,
2: वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड का एक एरिया है कि वो आप एनिमल जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनको उन्होंने नोटिस दिया है कि एक एरिया पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए और बहुत सी RWA ने किया भी है एंड पीपल आर वेरी हैप्पी. वो सैनिटाइज होता है वहां पे, बहुत सी मेडिकल कंपनीज आती हैं जो उनको सैंपल्स भी देती हैं. वो बहुत ही ऑर्गेनाइज वो सेक्टर हो जाता है और फिर वो डॉग अपनी जहां फीडिंग होती वहां पे वो उतनी वो लाइक उसको गाइड नहीं कर, उसका गार्ड नहीं करता. अगर आप स्टेप्स में अपने घर के दरवाजे के बाहर ही दे देंगे तो वो डॉग वहीं बैठा रहेगा, ही विल वेट फॉर द फूड एंड दूसरों को आना नहीं देगा.
1: तो और एक बात और, जैसे आपने बोला कि उसको अननेसेसरी अगर आप परेशान करते हो डॉग को या प्रोवोक करते हो तब वो काटता है.
2: बच्चे बहुत से उसको

0: बिकॉज इतना क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए पेट शॉप से इधर से लेके आप करेंगे तो बहुत से शैम्पू एलर्जीज भी करते हैं, जो स्किन डिजीजेस भी हो सकती हैं, तो इसलिए अपने डॉक्टर से लें और पीएच बैलेंस शैम्पू लें। अगर उसको ड्राइनेस है तो वो डिफरेंट शैम्पू देंगे, टिक्स हैं तो डिफरेंट शैम्पू देंगे। ऐसे उसको 15-20 दिन में एक बार नहलाएं, और जितना कम पॉसिबल हो उतना नहलाएं। बहुत से लोग बार बार नहलाते हैं, हर हफ्ते नहलाते हैं।
1: कितना फ्रीक्वेंसी होना
0: चाहिए? वंस ए मंथ आई थिंक इज सफिशियंट। अगर ग्रूमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, उसको ब्रश करें, लाइक जस्ट स्पेंड 5 मिनट इन द मॉर्निंग, ब्रश करेंगे तो आपका डॉग का रेपुटेशन भी आपके साथ ज्यादा अच्छा होगा, वो डोसाइल भी होगा। आपको ब्रश करते टाइम अगर टिक या कोई डिजीज, स्किन डिजीज पता लगती है तो बहुत अर्ली स्टेज में आपको पता लग जाएगा। वो ब्रश करने से उनके स्किन का जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें सर्कुलेशन बढ़ती है, स्किन ऑयल बढ़ता है, तो हेयर फॉलिकल रिवाइव हो जाते हैं, तो और ज्यादा उसका शाइन आने लगता है।
1: तो दिस इज लाइक फॉर ऑल पेट्स या पर्टिकुलरली डॉग्स के लिए आप बात कर रहे हैं?
0: जनरली पेट डॉग्स एंड कैट्स और इवन एंड रैबिट्स आल्सो
1: आई हैव सीन।
0: मोल्टिंग तो होता है, सब डॉग के बाल गिरते हैं, इट्स नॉट जैसे इंसान में गिरते हैं वैसा नहीं होता। ये शेड करते हैं जब वेदर चेंज होता है, उस टाइम पे दी नीड एक्स्ट्रा स्किन ऑयल्स और रेगुलर ब्रशिंग, लेस बेदिंग, तो उससे और
1: जैसे कैट्स में डॉक्टर साहब वो सेल्फ ग्रूमिंग करती रहती है अपनी, तो इसी तरह से क्या फिर हमें लगता है कि नहलाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कहां तक सही?
0: जनरली कैट्स को ज्यादा बात देने की जरूरत नहीं होती, अनलेस वो ऐसी जगह पे रह रही हैं जहां ओपन गार्डन में है, जहां एक्सपोजर होता है टू डर्ट एंड अदर इंसेक्ट्स एंड ऑल। अदरवाइज कैट्स दे आर वेरी क्लीन, वंस इन 3-4 मंथ्स इज ओके, वो ग्रूमिंग अपने आप करती रहती हैं। बस एक ही ध्यान रखें कैट ओनर्स की, जो वो अपने आप को क्लीन करती हैं तो वो बाल बहुत से वो स्वॉलो भी कर लेती हैं, तो स्वॉलो करने के बाद कुछ 3-4 महीने के बाद उनके स्टोमक में एक हेयर बॉल जैसा हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए मेडिसन आती हैं जो लुब्रिकेट करती है इंटेस्टाइन को, तो वो हफ्ते में एक बार उनको खिलाते रहा करें, जो कि गट में उसके इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, और नहीं तो बाहर जो वाइल्ड हैं वो घास वास खाती हैं तो वॉमिट कर देती हैं, तो अपने आप रीगजिटेट करके अपना हेयर बॉल निकाल देती हैं। पर हमारी डोमेस्टिकेटेड कैट्स वो बाहर नहीं जाती, घास का एक्सेस नहीं होता, तो इसलिए ये मेडिसिन देते रहें, लग्जेटिव देते रहें, तो ऑयल बेस्ड होते हैं ये, वंस इज लाइक वंस ए वीक एवरी संडे जस्ट गिव इट, तो देन दे लिव वेरी हेल्दी।
1: ओके ओके, तो बहुत सारे हमारे पास मैसेज आ गए हैं डॉक्टर साहब इस बीच में, और फोन कॉल्स भी हैं, पर जैसा हमने श्रोताओं को बताया आज बहुत सारे श्रोता जानना चाह रहे हैं बहुत कुछ, हमें ब्रेक लेने का भी टाइम नहीं मिला, हमें सॉन्ग सुनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन एक सॉन्ग यहाँ ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि आपको भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। तो आप लोग और सोच लीजिए आप लोगों को क्या हमें बताना है, क्या हमसे पूछना है। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेंगे 4 बजे तक, डॉक्टर आर टी शर्मा वेटनरी डॉक्टर, और बात कर रहे हैं एनिमल केयर के बारे में। तो बस जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। ये प्यारा सा गीत सुनते हैं, फिर लौट कर आते हैं।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: जी हाँ, आप हैं रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और बहुत सारे हमारे श्रोता डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं आपसे, बहुत सारी उनकी समस्याएं भी हैं, कुछ अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। और बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर आरटी शर्मा हैं रेडियो डॉक्टर के रूप में, और आप एक जाने माने वेटनरी डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, ये मैसेज आया है, हाई आई एम परिधि फ्रॉम दिल्ली, आई हैव अ कैट नेम्ड किट्टू हु केम टू अस ड्यूरिंग कोविड एंड हैव चेंज्ड आवर लाइव्स एवर सिंस। इनका क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था कि पेट्स हमें डिस्ट्रेस करते हैं, आर पेट्स डिस्ट्रेसेस, बट हाउ कैन वी डिस्ट्रेस आर पेट्स, स्पेशली कैट्स? लेटली आई हैव नोटिस माई कैट इज बिकमिंग वेरी डल, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ देयर मेंटल वेलबींग? बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल के साथ मेंटल भी।
2: वेरी गुड क्वेश्चन, बट थिंग इज जब वो हमें डिस्ट्रेस करते हैं तो वी कैन फाइंड आउट इफ आर कैट इज परिंग एंड वो आपके पास आ रही है, रब करके निकल रही है, शी इज हैप्पी, आप बहुत देर बाद ऑफिस से आए हो, आपके पास आई है, दैट मीन शी इज ऑलरेडी हैप्पी। और वो डिस्ट्रेस इज लाइक गिव एंड टेक काइंड ऑफ थिंग। और सेकेंडली अगर डल है, शी इज नॉट कमिंग व्हेन यू केम टू योर फ्रॉम योर ऑफिस, दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग विद हर। बहुत से और इश्यूज हो सकते हैं जैसे इंसान में होते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, जस्ट पैट हर, गिव हर फेवरेट थिंग्स, और उसको एक बार उसका बॉडी टेम्परेचर चेक कर लें, जब वो फील करने से आपको पता लग जाएगा। आप खाना रखते थे तो भाग के आती थी, अभी नहीं आ रही, दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो लाइक आपके बेड पे वो खुद चढ़ जाती थी, आप नहीं चढ़ पा रही, दैट मीन शी माइट बी हैविंग सम मस्कुलर प्रॉब्लम। तो ये एंगल अगर आप बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन जज योर एनिमल्स बिहेवियर, आप डेली देखते हो, थोड़ा सा भी नॉर्मल लगता है तो एक अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें, जो अंडरलाइंग कोई ऐसा रीजन हो सकता है कि आपको, जैसे हमें भी बहुत सी ऐसे इश्यूज होते हैं जो इवन साइकोलॉजिस्ट कैन अंडरस्टैंड, तो ऐसे आपका डॉक्टर कैन मेक आउट व्हाट इज प्रॉब्लम विद योर कैट। बट अदरवाइज इफ यू आर गेटिंग डिस्ट्रेस, दे आर आल्सो गेटिंग डिस्ट्रेस।
1: ओके, दैट्स गुड टू नो। डॉक्टर साहब, ये मैसेज हमें भेजा है, लिखने वाले हैं राकेश कुमार खरखौदा सोनीपत हरियाणा से, और लिख रहे हैं कि नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे पास एक फीमेल गोल्डन रिट्रीवर डॉग है, वो भी 3 महीने का है, लेकिन उसकी डैंड्रफ की समस्या बहुत है, तो क्या किया जाए?
2: देखिए, सबसे पहले तो उसको एक डॉक्टर को जरूर दिखाएं, डैंड्रफ हो सकता है, या स्केबीज हो सकती है, या और कोई स्किन डिजीज भी हो सकती है, पर जनरली ग्रोइंग पपीज में 4 मंथ्स के बाद दे गेट देयर परमानेंट कोट, तो 3 महीने के से शुरू हो जाता है, उनका बाल गिरने शुरू होते हैं, फिर नए बाल आने शुरू होते हैं। तो ऐसे में आप कोई भी अपने डॉक्टर से बात करके, ओमेगा ऑयल्स आते हैं उसके, आप खाने में थोड़ा कुछ ऑयल मिक्स कोई चीजें दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई कमर्शियल फूड अवेलेबल है तो वो दे सकते हैं जिसमें थोड़ा फैट ज्यादा होता है, तो फैट डेफिशिएंसी होने से इनकी स्किन ऑयल कम हो जाते हैं, तो डैंड्रफ हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। आप इसको रेगुलर ब्रश करते रहें, एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिए, जस्ट टू रूल आउट इसे सिंपल डैंड्रफ और एनी स्केबीज और एनी अंडरलाइंग सम अदर स्किन डिजीजेस। तो वो करने के बाद आप सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर देंगे, 3-4 महीने देना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसका एक डीवर्मिंग चेक कर लीजिए, स्टेटस वैक्सीनेशन अप टू डेट होना चाहिए, और रेगुलर ब्रशिंग करेंगे तो ये 100% ठीक हो जाता है।
1: जी जी। तो नमस्कार, मेरा नाम गोविंद बंसोड़े है, महाराष्ट्र लातूर से हम ये संदेश भेज रहे हैं। रेडियो डॉक्टर की प्रस्तुति को हम 100 में से 100 अंक देते हैं। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए क्या सुविधा है कृपया बताइए, हम दृष्टि बाधित हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी कि आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, और अगर इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो हम इसका प्रॉमिस तो नहीं करते हैं, पर बहुत सारे हमारे कार्यक्रम जो है आपको आकाशवाणी के YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका कि एड्रेस है आकाशवाणी AIR। आप उस पर जाएं, और अगर रेडियो डॉक्टर क्लिप आप उसमें क्लिक करेंगे लिखकर, या डॉक्टर का नाम लिखेंगे या सब्जेक्ट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि शनिवार और रविवार को हम कार्यक्रमों को पुनः प्रसारित करते हैं, तो आप जरूर ट्यून किया करें, हो सकता है आपका पसंदीदा कार्यक्रम उस दिन रिपीट हो रहा हो। तो इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो के चैनल के साथ और साथ ही साथ 3 से 4 सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, ये नेहा ने लिखा है जयपुर से कि मेरी सिस्टर के पास एक पर्शियन कैट है और 1 साल की, उसके लिए क्या आप केयर बताते हैं? कैट का भी थोड़ा सा तो आपने बताया था।
2: पर्शियन कैट मेन दे आर वेरी हेयरी, तो दे नीड रेगुलर ग्रूमिंग। बहुत सी कैट्स तो खुद करती रहती है, लेकिन जितनी डोमेस्टिकेटेड हो जाती है उनको खाना खाया सो गए और वो भूल जाती है ग्रूमिंग करना। तो बेस्ट यही है कि आप रेगुलर स्पेंड 5-10 मिनट्स उनके कानों के पीछे, उनके आर्म पिट्स में, यहाँ पे टेंगल्ड हो जाते हैं, बाल चिपक जाते हैं, तो वो आप या तो क्लिप कर दें या किसी ग्रूमर की हेल्प लेके आप वो उसको क्लीन करवा दें। रेगुलर ब्रश करते रहें और जब भी खाना दें तो उसका बर्तन बाद में अच्छी तरह क्लीन कर दें, बिकॉज कई बार बहुत से बर्तन में फंगल इन्फेक्शन हो जाती हैं जो कि लीड टू एनी डेंटल प्रॉब्लम और उनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप ये चीज़ें ध्यान रखें। पानी हमेशा फ्रेश रहना चाहिए, बिकॉज स्टैग्नेंट वाटर जो है दैट कैन लीड, देयर मेनी वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, GRDR तो बहुत ही कॉमन है हमारे कंट्री में, और ये पर्शियन कैट्स को बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप उनका फ्रेश वाटर हर 5-6 घंटे में फ्रेश वाटर दें और उसका खाने का बर्तन एकदम क्लीन रखें, खाना उसके बर्तन में पड़ा नहीं रहना चाहिए 1 घंटे से ज़्यादा, बिकॉज ये आजकल जो कमर्शियल फूड देते हैं वो हाइड्रेटेड नहीं होते, तो उनमें एकदम मॉइस्चर लेस होते हैं, तो जैसे ही वो रेनी वेदर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ये सोगी हो जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर जाते हैं, फिर वो हमारी कैट खाती हैं तो वो बीमार हो जाती हैं। तो या तो उसको फ्रेश खाना दें, जब दें तो 15-20 मिनट रखा, अगर नहीं खा रहे तो हटा दें वहां से, पड़ा नहीं रहना चाहिए। तो वो एक कैट का बिहेवियर भी ऐसा हो जाएगा कि आपने रखा और उसने फिनिश कर दिया, अदरवाइज वो बीच बीच में निबल करती रहेंगी और खाना का जो क्वालिटी है उसका जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो नहीं रहता भी इन आर कंडीशन जो हमारे जहां ह्यूमिडिटी रहती है, बारिश रहती है, तो ये एक ध्यान रखें।
1: तो आप फिक्स टाइम पे ही देना,
2: फिक्स टाइम पे ही देना चाहिए। इनके भी बायोलॉजिकल क्लॉक इंसान की तरह ही होती है, जब खाने का टाइम आएगा उसी टाइम वो वहाँ प्लेट के पास मिलेगी। तो आप
1: अगर पुराना हो जाए उस खाने को डिस्पोज ऑफ कर दें,
2: जब दें ही उतना, व्हाई टू वेस्ट द फूड, लेकिन वो अगर पुराना हो गया तो आप घर के बाहर जो होमलेस एनिमल्स हैं उनको दे सकते हैं, उनका इम्यूनिटी 100 टाइम बेटर होता है देन द डोमेस्टिकेटेड एनिमल। अगर स्टेल नहीं है तो आपको वैसे लग रहा है तो आप गिव इट टू द होमलेस डॉग्स, डोंट थ्रो इट अदरवाइज, बट बेस्ट यही है कि कम वेस्ट करें, कम दें। अंडर फेड एनिमल्स दे आर बेटर देन ओवर फेड एनिमल्स, तो वो इंसान भी हमेशा ज्यादा खाने से बीमार होता है, कम खाने से कोई बीमार नहीं होता। तो ये एक कंसेप्ट लेके चलें, और एनिमल थोड़ा सा ग्रीडी होता है, दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप, वो जितना भी रख देंगे वो खा जाएगा। तो अगर आप खाना देने के बाद दे शुड आस्क फॉर मोर फूड, दैट इज अ टाइम व्हेन यू स्टॉप इट, तो खाना नहीं दें उस टाइप पे, बस मेक श्योर कि आप न्यूट्रिएंट और पूरा उसका बैलेंस फूड दे रहे और कम खाना दें तो आपके एनिमल्स बहुत हेल्दी रहते हैं।
1: जी, एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो
3: हेलो
1: जी,
2: हेलो सर,
3: शालिनी मित्तल जी को नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार जी, बताएं।
3: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
2: नमस्कार सर, प्रणाम।
3: डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि हमारी फैमिली जो है वो एनिमल लवर और बर्ड्स लवर है, तो हमारे पास एक डॉगी था 14 ईयर्स तक रहा हमारे पास।
2: वेरी गुड।
3: लेकिन उसके बाद वो डॉक्टर साहब ने बता दिया अब आप कोई डॉग मत रखेंगे क्योंकि इनको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो क्या ये बात ठीक है? नंबर टू, अगर हम आज की डेट में किसी पड़ोसी या नॉन टू से कोई डॉग या कैट या एनिमल अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको लेने चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, कृपया बताने का कष्ट करें।
2: धन्यवाद सर। ऐसा है कि डॉग अगर 14 ईयर का रहा है, दैट ऑल क्रेडिट जो जाता है वो आप ही को जाता है, आपने इतनी अच्छी तरह रखा है कि ही लिव्ड हिज फुल लाइफ। जैसे इंसान 100 ईयर प्लस होके जाते हैं तो वो अपनी लाइफ पूरी जी के जाते हैं, जाना तो सबको है, लेकिन आपका डॉग बहुत अच्छी

0: एज में गया तो आपको उसका लुक आफ्टर करने के लिए आप क्रेडिट जाता है, और कोई डॉग दोबारा नहीं रखें ऐसा मुझे नहीं लगता। कोई एनिमल लवर नहीं होगा जब उसको नॉलेज नहीं होगी कि एनिमल से कोई इन्फेक्शन होती है। कोई इन्फेक्शन नहीं होती अगर वो हेल्दी हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपने अच्छी तरह रखा है। तो बिकॉज बोथ आर द डिफरेंट स्पीसीज, इंसान अलग है कैटेगरी में आता है, एनिमल अलग में आता है। एनिमल से एनिमल को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ह्यूमन को ह्यूमन से डिजीज़ ज़्यादा होती हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड सी डिजीज़ हैं जो कम्युनिकेबल हैं। अगर आप उसका ध्यान रखें तो डॉग दे आर इक्वली गुड एंड दे आर मोर हेल्दी देन द ह्यूमन बींग्स। बाकी आप बोल रहे हैं नया डॉग आप जा अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो जहाँ से भी आप ले रहे हैं उसे एक उसका ब्रीड का सर्टिफिकेट ले लीजिए। अगर आप ब्रीड के लिए इतना नहीं जा रहे तो हमारे इंडियन डॉग्स ही इतने हैं कि आप कोई भी आपके आसपास कोई एनजीओज हैं या कोई भी ऐसा घर के बाहर डॉग दिए बच्चे दिए हैं किसी ने, तो उसमें से अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे तो आई थिंक दे विल ब्लेस यू लाइक एनीथिंग। उसको अच्छी तरह रखेंगे, स्टरलाइज करवा देंगे 1 साल के बाद, तो उस वो भी 14-15 साल रहेगा। राधा ये डॉग ज्यादा देर रहते हैं, 20-20 साल तक जिंदा रहते हैं। तो और उसका एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आप लाइसेंस जरूर रजिस्टर करवा लीजिए। तो आई थिंक यही एक चीजें होती हैं। बाकी डॉग्स को कोई ज्यादा बहुत बड़ी स्क्वेयर फीट जगह नहीं चाहिए होती, उसको सिर्फ दिल में ही जगह चाहिए। अगर उतना ही जगह आपके पास है तो आप डॉग रख सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि जगह जो है दिल में होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब देखिए मैसेज और भी आ रहे हैं हमारे पास। ऐशानी लिख रही है दिल्ली से कि क्या एडल्ट कैट को हम होम कुक्ड फूड दे सकते हैं, ये फूड उनकी डाइट में हम कैसे इंट्रोड्यूस करें। जैसे अपने आपने फूड की बात की थी डॉक्टर साहब, और ये भी कहा था कि उन्हें टाइमली देना चाहिए और हटा देना चाहिए। कई बार ये होता है कि कुछ कुछ ही खाना वो खाती हैं, वो भी बाजार का, तो क्या हम एडल्ट में इसकी हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, होम कुक फूड पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं?
0: फूड तो दे सकते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि जो उसकी न्यूट्रिशन लेवल है वो जो रिक्वायर्ड है उतना मिलना चाहिए उसको। लाइक दे आर नॉन वेजिटेरियन, दे नीड मसल प्रोटीन, फैट होना चाहिए उसमें, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ये सब बैलेंस अगर आप करते हो तो आई थिंक दे सकते हैं, बट अदरवाइज कैट्स नो दे डोंट नीड एनी होम कुक्ड फूड। वो जो कमर्शियल फूड आते हैं वो ज्यादा बैलेंस होते हैं एंड दे कैन ईट द सेम थिंग थ्रू आउट द लाइफ। तो मुझे लगता है आप घर पे अगर वो कमर्शियल फूड पे हेल्दी है और कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है तो डोंट स्विच टू द होम कुक्ड फूड। बिकॉज होम कुक्ड फूड में बहुत से लोग मिल्क देते हैं, पनीर देते हैं, चपाती देते हैं। कैट्स आर नॉट दे हंट, ये दे आर हंटर, तो वो बाहर जाते हैं तो कहीं चूहा मार लिया, कोई बर्ड मार लिया, तो दे लिव ऑन दैट, सो दे नीड वेरी हाई प्रोटीन डाइट। वो जनरली नॉन वेज से मिलता है। अदरवाइज जैसे उसको कंपनसेट करें, कुछ सोयाबीन देना चाहता है या चना देना चाहता है, तो वो कैट्स उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो बेस्ट है वो कमर्शियल फूड, प्लस इनका इनटेक तो कम ही होता है। तो मुझे लगता है अदरवाइज आप यू कैन गिव, बट कंसल्ट योर डॉक्टर्स जो आपके कैट का बॉडी वेट कितना है, कितनी एक्सरसाइज है, अकॉर्डिंगली दे विल फॉर्मुलेट द होम कुक्ड फूड।
1: ओके, हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और वापस आते हैं, और जो भी मैसेजेस हमारे पास हैं उनको हम फिर पढ़ लेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप हैं रेडियो डॉक्टर में और बिल्कुल खुशियां बटोरने के लिए ही होती हैं, और खुशियां बटोरिए और अपने साथियों के साथ, और वो साथी जरूरी नहीं है कि पुरुष महिला ही हों, वो साथी हमारे प्यारे प्यारे पेट्स, हमारे जानवर भी हो सकते हैं, वो चाहे स्ट्रे भी हों, वो भी हमारे दोस्त हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बीच में कहा, कुछ आप उनको प्यार से दुलार देंगे तो वो भी आपके पीछे पीछे हो लेंगे, है ना डॉक्टर साहब। तो देखिए ये मैसेज हमारे पास आया है, हमारे एक श्रोता है राजकुमार गुप्ता जी, नोएडा में रहते हैं और लिख रहे हैं कि मैं कभी बाहर जाता हूं तो मैं अपने जो पेट्स हैं उनको छोड़ के ही नहीं जाना चाहता हूं, उनके बिना मैं रह नहीं पाता हूं। तो ये बताइए कि मैं उनको ट्रैवलिंग के लिए क्या करूं कि मैं साथ में ले जाऊं, और क्या मैं प्रिकॉशंस उस समय रखूं?
1: बिल्कुल लेके जा सकते हैं सर, बिकॉज दे आर इक्वली हैप्पी विद यू, दे ऑल्सो लव ट्रैवलिंग एंड ऑल। तो अपने डॉक्टर से बात कर लें, वो उसके हिसाब से एक मेडिसिन आती हैं जो ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सा सेडेशन होती है, एंटी वॉमिटिंग होती है, क्योंकि किसी किसी एनिमल्स में मोशन सिकनेस होती है तो स्लाइवेशन होती है, वॉमिट करते हैं, जैसे इंसान भी कई बार बस में या गाड़ी में करते हैं। तो उसके लिए पहले से मेडिसिन दे देंगे तो दे'ल बी मोर कंफर्टेबल। आप बिल्कुल साथ में लेके जा सकते हैं, आपका भी सफर बहुत अच्छा रहेगा, दे विल इंजॉय योर कंपनी। आजकल बहुत से होटल्स हैं जो पेट फ्रेंडली हैं, रिजॉर्ट्स हैं जहां लेके जा सकते हो, बहुत होटल्स हैं, दे डू पेट एक्सरसाइज एंड ऑल, वो गेम्स भी रखते हैं, तो जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव। तो मेनी एनिमल लवर्स दे आर टेकिंग देयर पेट्स विद देम एंड दे आर वेरी हैप्पी। और बाकी आई थिंक
0: थोड़ा एक बार जाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से मिल लें और फिर जाएं। तो बस अब कार्यक्रम समेट रहे हैं, हमारे कुछ श्रोताओं ने हमारे साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। सलमा बेगम, मोहम्मद इम्तियाज, जवाहर कैम, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली से इन्होंने अपनी बात लिखी है कि किस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए काउस का, कि वो जो है हम जो प्लास्टिक्स फेंकते हैं वो ना खाएं। यही बात लिखी है अनमोल जी ने महाराष्ट्र से कि वी शुड इनकलकेट हैबिट ऑफ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डू नॉट थ्रो फूड इन गार्बेज, इंस्टेड गिव इट, वी शुडंट गिव इट जस्ट लाइक दैट, हमें उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो बहुत समय कम है डॉक्टर साहब, आप बस एक लाइन में मुझे बता दें कि आज जो एनिमल डे है उस पर क्या कहेंगे हमारे सभी श्रोताओं को?
1: आई थिंक दिस इज अदर पार्ट ऑफ द कॉइन, इंसान और एनिमल्स, तो इसलिए लिव एंड लेट लिव। और मैं तो ये बोलता हूँ ईच वन कीप वन, लाइक अगर आप घर के अंदर नहीं रख सकते हो तो एक घर के बाहर जरूर एक एनिमल रख लीजिए, जिसको आप खाना खिलाते हैं, उसका हेल्थ का लुक आफ्टर करते रहें। तो एक बर्तन पानी का छत के ऊपर जरूर रखें, एक घर के बाहर जरूर रखें।
0: बहुत अच्छी बात, और इसी बात के साथ हम इस कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं, और हमें ध्यान रखना है, द वर्ल्ड इज देयर होम टू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आरटी शर्मा, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप वेटरनरी डॉक्टर हैं और आज समय निकालकर यहाँ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वीकार करें। शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

मुख्य समाचारों का। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विकसित भारत की यात्रा भारत के संस्थानों, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार की ताकत पर आधारित होगी। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम सेतु योजना ने एक वर्ष पूरा कर लिया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अमेरिका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारोके से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क के सैम क्षेत्र में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स पक्षियों को छोड़ा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामाजी कृष्ण वर्मा और सुब्रमण्यम शिवा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। भारतीय वायुसेना ने आज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह शेखों की स्मृति में देशभर के विभिन्न शहरों में शेखों भारतीय वायुसेना मैराथन का दूसरा संस्करण आयोजित किया। जापान में एशियाई खेलों का समापन हो गया है। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदों के साथ चौथे स्थान पर रहा। और अंत में मौसम विभाग ने केरलम, माही, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों में कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये थे एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. माता पिता और बच्चों का रिश्ता जब पारिवारिक जीवन की बात आती है तो हर कोई ये जानने का प्रयास करता है कि माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध कैसे आदर्श बन सकता है।

पॉजिटिव सकारात्मक पेरेंटिंग तकनीक बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्य और नीति नियम के साथ उनका विकास हो सकता है, इस तरह से काम करती है और हर माता पिता का भी यही सपना रहता है। हालांकि ये उपलब्धि इतनी आसान नहीं है और ये जानना महत्वपूर्ण है कि माता पिता के उनके बच्चों के बीच का संबंध दो तरफा सड़क की तरह है। दूसरे शब्दों में यह वास्तव में एक माता पिता और उनके बच्चों के बीच एक साझेदारी है। जैसे विविध रंगों वाले फूलों से एक बगीचा सुंदर दिखाई देता है, इसी तरह अगर माता पिता सिखाते हैं कि कैसे एक मालिक की तरह अपने बच्चे के व्यक्तित्व को पहचाने और उसे पोषण देने में सक्षम बने, तो उनका गार्डन सुगंधित हो जाएगा। ये सभी पॉजिटिव पेरेंटिंग की ओर निर्देश करते हैं। जब माता पिता प्रभावी पेरेंटिंग का कौशल विकसित करते हैं तो वे पीढ़ी अंतराल यानी जेनरेशन गैप को मिटाने के सक्षम होते हैं। जब पेरेंट्स इस बात को समझने लगते हैं किन चीजों में मर्यादा रखी जाए, कहां प्रोत्साहित किया जाए और कहां अंकुश रखा जाए, तो उनके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। इस तरह वे अच्छे माता पिता बन सकते हैं। जब लोग ये नहीं जानते कि एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, तो दोनों के बीच दूरियां विकसित होती है। सच्ची समझ के साथ युवा वर्ग भी अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आज के युवाओं को संपूर्ण समझ प्रदान करने के उद्देश्य के साथ बाल्य और किशोर अवस्था के दोनों वर्गों अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर सकते हैं। इस हेतु से शुद्ध प्रेम और समता के साथ उनका कैसे विकास किया जाए, यह मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। नैतिक मूल्यों, अच्छे शिष्टाचार और पॉजिटिव पेरेंटिंग संबंधित उन्होंने उत्कृष्ट समाधान दिए हैं, जो युवावस्था के दौरान भी काम आते हैं। सभी पेरेंट्स के लिए आज के समय अनुसार गाइडेंस, अपने बच्चों की संभाल कैसे करें, माता पिता और बच्चों का संबंध कैसा होना चाहिए, आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे और माता पिता के बीच रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम आरजे चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी रिलेशनशिप से बनेंगे बच्चों का हेल्थ। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए, इसीलिए सबसे अच्छा स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं। वह ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा स्कूल से ज्ञान के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी सीखेंगे। तो हाल ही में हुई एक रिसर्च की मानो तो बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण उसे अच्छे स्कूल में भेजने से ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर सभी स्कूल एक जैसे होते हैं और अपने हर छात्र पर बराबर ध्यान देते हैं, लेकिन जिन बच्चों के माता पिता उनका होमवर्क करने में मदद करते हैं, पढ़ाई की अहमियत समझते हैं और बच्चों के सभी स्कूल इवेंट्स अटेंड करते हैं, उनके बच्चे दूसरों बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच का रिश्ता सबसे अच्छा और जरूरी बंधन है। यह रिश्ता बच्चों की पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार और पसंद की नींव डालती है। यही से उसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का विकास होता है। जीवन में दूसरे लोगों से भी अपना रिश्ता अच्छा बनता है। मुश्किल परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर काबू रखना, बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और भाषा का विकास होना, बच्चे का आशावादी और आत्मविश्वास से पूर्ण होना, बेहतर सोशल और एकेडमिक परफॉर्मेंस रहना। आप चाहे कितना भी बिजी हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए समय जरूर निकालें। जैसे जैसे आपके बच्चे की उम्र बढ़े तो आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी बदल दें। बच्चे की उम्र कुछ भी हो, उससे हमेशा प्यार से बात करें और गर्मजोशी दिखाएं। उनको बातों बातों में प्यार से ये समझाएं कि आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं और उन्हें आगे का रास्ता दिखाएं। बच्चा जो कुछ भी कहे उसे ध्यान से सुने और उसके प्रति हर परिस्थिति में हमदर्दी दिखाएं। कोई भी समस्या हो उसे हल करने में उसकी मदद करें। जब आप अपने बच्चों के साथ कोई भी समस्या को हल करेंगे
तो वह आपको देखकर सीखेंगे कि किसी भी मुश्किल हालात में कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप उसके करीब आ सकते हैं और उसके जीवन का सबसे अच्छा दोस्त बन सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे जरूरी है और अच्छा बंधन होता है। यह रिश्ता बच्चों के व्यवहार का पसंद और बच्चों की पर्सनैलिटी पर असर डालता है। यही से बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। माँ बाप और बच्चों के बीच में अगर रिश्ते अच्छे हो तो इसके बहुत फायदे हो सकते हैं। अपने जीवन में दूसरे लोगों के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बनाना, बच्चों का भावनात्मक, मानसिक और भाषा का विकास होना, बच्चों का आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना और आशावादी होना, मुश्किल वक्त में और परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू रख पाना, बेहतर एकेडमिक और सोशल स्किल्स होना। तो दोस्तों, ये थी बेस्ट पेरेंटिंग के कुछ असर अपने बच्चों पर। होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज वेरी यूजफुल टू ऑल दोस पेरेंट्स। विद दिस वी कंक्लूड टुडेज प्रोग्राम ऑफ लम्हे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी आरजे चेतन से। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: स्वागत स्वागत स्वागत संडे की इस खूबसूरत सुकून भरी शाम की ओर बढ़ती दोपहर में आप सभी का स्वागत आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी के साथ। मैं आपके साथ प्रियंका मामगिन। संडे का दिन है, ऐसे में आराम ही सबसे बड़ा नाम बन जाता है। जी हाँ जनाब, ये बात फिजिकल आराम की हो रही है, शारीरिक आराम की हो रही है। वहीं दिमाग की बात की जाए तो दिमाग को आराम करते हुए भी आराम नहीं करता है। दिमाग को कभी भी आराम नहीं होता है और लगता है कि दिमाग हर वक्त चल रहा है। और अब दिमाग चलाने की बारी आ गई है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलेगी तो आप बनेंगे रेनबो जीनियस। जी हाँ, हमारे पास है 5 सवाल और इन सवालों के सही जवाब देकर आप बनेंगे रेनबो जीनियस। और आज की बात की जाए तो ये अक्टूबर का महीना है, पहला हफ्ता है, और इस पहले हफ्ते में 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हम सभी भारतीय सेलिब्रेट करते है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। जी हाँ, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा बात यह है कि आज है 4 अक्टूबर और आज है क्या है, आज वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस भी हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी को नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक की और पशु विश्व पशु दिवस की, वर्ल्ड एनिमल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्दी से तैयार हो जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पास आएंगे। और हो सकता है अगर आप जंगली जानवरों से प्यार करते हैं, आपको पशु पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं, तो आज आप रेनबो जीनियस बन ही जाए। कौन सी नंबर है जिन पर आपको कॉल करना होगा? हमारे पास 2 नंबर है, 0112342108 और 0112342108। इन पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, दे सकते हैं 5 सवालों के जवाब और बन सकते हैं रेनबो जीनियस।

चिल होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धड़ाधड़ कॉल आ रहे हैं और हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं बहुत से हमारे लिसनर्स, क्योंकि वो बनना चाहते हैं रेनबो जीनियस। तो हम

0: अपने पहले लिसनर्स से मिलकर उनसे पूछते हैं वो पांच सवाल जिनका सही जवाब देकर वो बनेंगे रेनबो जीनियस। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार मैडम।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं उमेश बात कर रहा हूँ, भिवानी हरियाणा से।
0: जी उमेश जी, आप क्या करते हैं?
1: जी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, हरियाणा पुलिस में एज कांस्टेबल जॉब कर रहा हूँ।
0: ओ, ओ क्या बात है, फिर तो टफ टफ क्वेश्चन पूछे या आसान से क्वेश्चन पूछे?
1: जी आप टफ साफ शायद आसान पूछे और मेरे को ना आए।
0: अच्छा ओके दैट्स ग्रेट।
1: मतलब जनरल नॉलेज में आप शायद किसी के लिए कोई क्वेश्चन आसान तो किसी के लिए हार्ड भी हो सकता है।
0: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, डिपेंड करता है किस फील्ड में आप ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उसकी पढ़ाई ज्यादा करते हैं, ऐसा होता है ना?
1: जी
0: जी तो उमेश जी, हम नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मना रहे हैं, ये जो वीक है ये कब से कब तक मनाया जाता है?
1: ये 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक।
0: गलत सवाल जवाब।
1: 2 से 7 अक्टूबर तक।
0: 8 अक्टूबर तक, 2 से 8 अक्टूबर तक हम बनाते हैं अपना नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। ओके नेक्स्ट टाइम दूसरे कॉलर से जुड़ते हैं हम। हेलो हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी कौन बोल रहे हैं आप?
2: जी मेरा नाम आकाश है।
0: हाय आकाश।
2: हेलो
0: जी आकाश, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
0: और क्या करते हैं आप?
2: जी मैं पढ़ता हूँ, वैसे तो मैं टीचर हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं साथ में।
0: ओके तो अक्टूबर का महीना है और आज है 4 तारीख। तो आज क्या है?
2: आज आपने बताया था वर्ल्ड एनिमल डे है।
0: बिल्कुल सही जवाब, पहला जवाब आपका बिल्कुल सही रहा। इसी के साथ आपने न्यूज जो मैंने पढ़े थे वो आपने ध्यान से सुने थे? ओके तो आप बताइए कि हमारे जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं उनका क्या नाम है?
2: एनवायरमेंट जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका नाम माना है ना?
0: ये मैंने न्यूज में बताया था, पढ़ा था, तो उनमें उनका नाम भी आया था।
2: हाँ जी हाँ जी, एनवायरमेंट मिनिस्टर का नाम बताना है ना, भूपेंद्र यादव।
0: बिल्कुल सही जवाब, कौन कर रहा है आपकी मदद पीछे से?
2: नहीं मैम कहीं नहीं, भी कॉल करने में टाइम लग रहा है।
0: नहीं, कोई तो है।
2: भूपेंद्र सिंह या भूपेंद्र यादव, इसमें कंफ्यूजन है।
0: यादव है वो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भारत सरकार में, हमारे वो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी उनका नाम है। और वो राजस्थान के कौन सी जगह के नेशनल पार्क में आज गए थे? राजस्थान कौन सी जगह में वो नेशनल पार्क है जहाँ वो गए थे?
2: वहाँ पे उसका नाम बताना मैम।
0: हाँ जी
2: वो केट बस्टर्ड इंडियन देखने गए थे चंबल घाटी में।
0: चंबल कहाँ पर है?
2: चंबल तो मैम राजस्थान में ही है।
0: राजस्थान में
2: है? राजस्थान और वो जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है वो पड़ता है एमपी।
0: ओके जनाब आप गलत सही क्वेश्चन का गलत जवाब दे रहे हैं। वो राजस्थान के जैसलमेर में गए थे, डेजर्ट नेशनल पार्क में वो गए थे जहाँ पे उन्होंने 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को वहाँ पे छोड़ा और उन्हें आज़ाद करके वहाँ पे उस जो नेशनल पार्क है उसका हिस्सा बनाया।
2: थैंक यू
0: सो वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। जी हाँ जनाब, अगर आप भी देना चाहते हैं 5 क्वेश्चंस के आंसर और उन क्वेश्चंस के आंसर देकर आप बनना चाहते हैं रेनबो जीनियस, तो प्लीज़ हमें कॉल करें उन्हीं नंबर्स पर जिन पर आप हमें कॉल कर रहे हैं। कौन से हैं वो नंबर? अगर उन नंबर की तरफ ध्यान दिया जाए तो वो नंबर है 0112342108 और 0112342108 4। ये दो नंबर हैं जिन पर डायल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, 5 सवालों के जवाब दे सकते हैं और बन सकते हैं रेनबो जीनियस।

0: जी हाँ जनाब, सीटी मारने का टाइम आ गया है, क्योंकि अगर आप 5 क्वेश्चंस के सही जवाब देते हैं तो बनेंगे आप रेनबो जीनियस। हमारे साथ एक पर्सन जुड़ चुके हैं, लिसनर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से?
1: हाँ, मैं केशव चक्रवर्ती, अगरतला त्रिपुरा से।
0: केशव जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: अगरतला त्रिपुरा से। नमस्ते मैडम।
0: अगरतला से बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है केशव जी?
1: हेलो
0: जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
1: आवाज मैडम,
0: मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ,
1: थोड़ा कॉम आ रहा है।
0: अच्छा, आप उस जगह चले जाइए जहाँ पे बिल्कुल सही आवाज पकड़े आपका फोन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जंगल का राजा किस जानवर को कहा जाता है?
1: रॉयल बंगाल टाइगर,
0: शेर को। ओके, पहला आंसर आपने बिल्कुल सही दे दिया है। सुंदरबन तो किसी और चीज के लिए है। ओके, इसी के साथ आप हमें ये बताइए कि जो हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उनका नाम क्या है?

0: সেলিব্রেটিং করা হয় রাজস্থান জয়সলমীর তীরে সেলিব্রেটিং।
1: আপনার টাইম আপ হো রা হ্যায় প্লিজ জলদি সে আনসার কিজিয়ে। আজ 4 অক্টোবর হ্যায় আজ কোন সা ডে হাম সবি সেলিব্রেট কর রহে হ্যায় পুরে বিশ্ব মে সেলিব্রেট কিয়া জা রাহা
0: হ্যায় 4 অক্টোবর নেই ম্যাডাম ইয়াদ নেই আ রহা হ্যায় থ্যাংক ইউ।
1: ओके आज है 4 अक्टूबर और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एनिमल डे विश्व पशु दिवस। ओके नेक्स्ट टाइम आप जरूर
0: थैंक यू।
1: इसके साथ एक और कॉलर है, आइए उनसे जुड़ते हैं। हेलो लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। जी जनाब, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारे दो नंबर हैं 011-234-21080 और 234-21084। ये दो नंबर हैं जिन पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, 5 सवालों के जवाब दे सकते हैं, रेनबो जीनियस बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब गाने चल रहे हों या फिर जो एडवर्टाइजमेंट चल रही हों उस टाइम पर आप कॉल करते हैं, उस टाइम पर हम कॉल नहीं ले सकते हैं। और जैसे ही खाना खत्म होने वाला था आप कॉल ड्रॉप कर देते हैं, उससे क्या होता है एक लिसनर हम लूज कर देते हैं और आप भी हमसे जुड़ नहीं पाते। इसलिए कोशिश करिए कि आप जब कॉल करते हैं तो कॉल पे लगातार बने रहें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
6: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
6: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
6: म्यूजिक मस्ती।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: और इससे पहले कि ये जो लिसनर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं चले जाएं, हम उनसे जुड़ जाते हैं, उनसे पूछते हैं वो सवाल जिनका आंसर देकर वो बनेंगे रेनबो जीनियस। हेलो
10: हेलो
1: हाय, कौन बोल रहे हैं आप?
10: हाँ, क्या FM पे बात हो रही है?
1: जी बिल्कुल, आपकी FM से बात हो रही है, FM रेनबो पे आपका कॉल लगा है। और आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, क्या आप रेनबो जीनियस का हिस्सा बनना चाहते हैं? लगता है जनाब मूड से तो आए थे कि रेनबो जीनियस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, लेकिन आरजे, एक नया आरजे लग रहा है उन्हें कि ये आरजे आज कैसे आ गई, संडे को तो ये आते ही नहीं है। तो एक कंफर्ट लेवल होता है ना जो दूसरे आरजेस के साथ जो नॉर्मली इस प्रोग्राम को करते हैं, शायद वो नहीं बन पा रहा है कहीं पर। चलिए जनाब, हम तो आपके इंतज़ार में हैं, आप चाहे कभी भी कॉल करें हम आपका कॉल ज़रूर उठाएंगे। आप कर सकते हैं हमें कॉल 011-234-21084 पर और कह डालिए ना आई एम द बेस्ट। एक पर्सन है जो कहना चाहते हैं आई एम द बेस्ट। हेलो, क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं रेनबो जी?

0: ऑफिस में?
1: यस यस।
0: तो आप अपना नाम बताइए और जगह बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जनाब, आपका तो नेटवर्क डाउन है। प्लीज़ आप या तो उस एरिया में आ जाइए जहाँ पे बिल्कुल सही नेटवर्क है और आपकी आवाज़ हम तक पहुँच सके, या फिर दूसरे लिसनर्स को मौका दीजिए ना आई एम द बेस्ट कहने का।

0: कौन जुड़े हैं हमारे साथ, आइए इससे पहले वो चले जाएं उनसे जुड़ जाते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: यस मैम, मैं बिहार पटना से बोल रहा हूँ, आदित्य राज, क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ।
0: हाय आदित्य, हाउ आर यू?
1: आई एम फाइन।

0: आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है बोर्ड एग्जाम्स की?
1: मैम ठीक ही चल रही है अभी तो।
0: अरे कहो, बहुत बढ़िया चल रही है, अक्टूबर आ गया है है ना? आप अपने हिसाब से तो अपना पूरा 100% दे रहे हैं ना? तो फिर बिंदास होके बोलो, बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपने हिसाब से बहुत बेस्ट करूंगा, आई एम द बेस्ट।
1: यस मैम।
0: ओके, तो जनाब रेडी हैं 5 क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए?
1: यस सर।
0: ओके, तो जनाब ये बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, नेशनल एनिमल?
1: जी
0: हाँ जी,
1: लायन।
0: बाघ।
1: यस सर।
0: ओके, और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भारत का राष्ट्रीय? बिल्कुल सही जवाब, 2 सवालों के आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिए हैं। तो आप हैं बिहार से, बिहार के पास है हमारा पश्चिम बंगाल।
1: यस मैम।
0: और वहां पे तिस्ता नदी भी है।
1: यस मैम। यस मैम।
0: तो वहां पर कुछ मछुआरों ने देखा कि एक जानवर का बच्चा नदी में बहा जा रहा था, और उन्होंने वन विभाग की टीम के साथ उस जानवर के बच्चे को नदी से निकाला और वापस उसकी माँ से मिला दिया। तो वो जानवर का बच्चा किस जानवर का बच्चा था?
1: वेस्ट बंगाल में।
0: अरे ये तो बहुत रील्स बनी थी इसकी, इतना क्यूट बेबी था वो। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे नहीं, क्रोकोडाइल तो पानी में ही रहता है, वो बच्चा पानी में नहीं रहता था। बट आपका ये 3रा सवाल है, पश्चिम बंगाल में, ये सितंबर के महीने की ही बात है, पश्चिम बंगाल की तिस्ता नदी में एक हाथी का बच्चा जो बहुत छोटा था, कुछ ही दिनों का था, वो अपनी माँ से बिछड़ गया क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज था और वो नदी में बहता चला गया। और कुछ मछुआरों ने उस बच्चे को देखा और फिर वन विभाग की टीम को सूचित किया, और दोनों ने मिलकर, वन विभाग की टीम ने और जो वो मछुआरे थे, लोकल मछुआरे, उन सब ने मिलकर उस छोटे से हाथी के बच्चे को बचाया और फिर उसको उसकी माँ से भी मिलवाया। है ना क्यूट सी बात। हेलो आदित्य।
1: यस मैम। यस मैम।
0: आप सुन रहे हैं?
1: यस मैम।
0: ओके दैट्स ग्रेट आदित्य, आप जो पढ़ाई बहुत अच्छी से चले, कोई बात नहीं, सॉरी नहीं कहते हैं, ये मोमेंट था, आता था ठीक है, नहीं आता तो ठीक है ना, हर किसी को हर आंसर नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट टाइम
1: आंसर बता दीजिए।
0: आंसर है हाथी का बच्चा था वो।
1: ओके।
0: उसका हाथी का बच्चा था अतनी का, और वो बह गया था नदी में, फिर उसको वन विभाग की टीम ने और मछुआरों ने नदी से निकाल के उसकी माँ से मिलवाया। ओके नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से ट्राई करना और पढ़ाई बहुत अच्छे से करना। ऑल द वेरी बेस्ट।
1: थैंक यू।
0: बाय बाय। जी हाँ जनाब, और कौन है जो बनना चाहते हैं रेनबो जीनियस? क्योंकि अभी तक तो हमें कोई भी रेनबो जीनियस मिल नहीं पाया है। तो चलिए जनाब, हम लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, एड ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। एक कॉल तो आ रही है, क्या करें, कॉल को ले लिया जाए पहले? चलिए जनाब कॉल लेते हैं पहले। हेलो।
2: हेलो।
0: हाय नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
2: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: अशोक कुमार, दिल्ली से।
0: आप अशोक कुमार हैं?
2: इन्वर्टर नहीं।
0: मैं वही बोलने वाली थी। फिर तो क्वेश्चन क्या पूछा जाए आपसे, गाना ही सुन लेते हैं आपका, है ना?
2: मुझे तो रेलगाड़ी वाला गाना भी नहीं आता। रेलगाड़ी छुक छुक छुक, रेलगाड़ी।
0: जी बिल्कुल अशोक जी, बहुत अच्छा। अशोक जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारा वर्ल्ड एनिमल डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है?
2: आज ही तो किया जा रहा है सेलिब्रेट, 4 अक्टूबर।
0: बिल्कुल सही जवाब, पहला जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है। इसी के साथ हम आपको एक और बात पूछना चाहेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है?
2: तो बहुत बड़ा जानवर का सवाल पूछ लिया आपने इंसान से।
0: इंसान और जानवर दोनों दोस्त ही
2: हैं। तो मैम जो जिसकी
0: समुद्र में रहती है वो
2: सबसे बड़ा जानवर,
0: समुद्र में रहती है वो, जब मैंने रहती भी बोला समुद्र में। नहीं जनाब,
2: घड़ियाल
0: वो सबसे बड़ा जानवर कैसे हो सकता है?
2: अच्छा, वो फिर दरिया वाला घोड़ा होगा।
0: नहीं, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर साइज के अकॉर्डिंग है ब्लू व्हेल। वो सबसे बड़े हैं जो पूरे ब्लू ब्लू व्हेल होती है ना, जो समुद्र में रहती है, जिसकी बहुत सारी पिक्चरें बनी हुई हैं और जिसके लिए बहुत सारे, मतलब बहुत सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए। और वो सबसे बड़ी व्हेल होती है विश्व की, ब्लू व्हेल कहते हैं उसे। थैंक यू सो मच।
2: ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और आज तो आपका प्रस्तुतिकरण बेहद ही उत्तम है। अति उत्तम क्या कहूँ, लगता है आज के रेनबो जीनियस आप नहीं बना पाएंगे।
0: रियली?
2: मुझे ऐसा आभास हुआ। आज बना नहीं पाएंगे, कोई रेनबो जीनियस 5 बजने वाले हैं और रूट पर गाने आप सुना रहे हैं।
0: बिल्कुल सही
2: जगह, तो कुछ सवाल ही पूछ लें, कोई लिसनर को जोड़ लें।
0: जी, अगर लिसनर कॉल करेंगे तो हम जरूर जोड़ेंगे। जी हाँ जनाब, हम भी यही चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े और हम आपसे सवाल पूछें और आप बने रेनबो जीनियस।
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: बदली स्टाइल गया है पर जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: से आपकी क्यारी तक बागों से घर की फुलवारी तक हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर जी हाँ प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो
3: Welcome back, Rainbow Genius. और अब हमसे जुड़ चुके हैं एक लिसनर. हेलो. कॉल ड्रॉप हो गई. क्या बात है जनाब. मैं तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. अभी तो मैंने हार्ड क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन थे वो मैंने कुछ पूछना शुरू ही नहीं किया है. जनाब जल्दी से डायल कीजिए नंबर हमारा 0112342108 4012342108 0 और बन जाइए रेनबो जीनियस.
4: पागल मन
3: चले कोई तो जुड़ा है. आइए उनसे बात करते हैं. हेलो हेलो
5: हेलो नमस्कार मैडम जी.
3: नमस्कार. कौन बोल रहे हैं आप?
5: मैं सतीश बात कर रहा हूँ फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से.
3: सतीश जी क्या करते हैं आप?
5: मैं तो मैडम जी खेती बाड़ी करता हूँ और सिलाई करता हूँ.
3: हाँ ओके दैट्स ग्रेट. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए.
5: हाँ पूछा जाए मैडम जी. मैं तो

0: का ये बात जीनियस बन गया हूँ।
1: अच्छा।
0: आपका प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम करने में बहुत बढ़िया लगता है, और पहली बार मेरे आपसे बात हो रही है, और पहली बार आप जो प्रोग्राम करती हैं बहुत अच्छा लगता है। अभी अभी नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, 15 नवरात्रि के बाद
1: चलिए। अच्छा चलिए चलिए, अब हम रेनबो जीनियस बनते हैं, नहीं तो फिर रह जाएंगे आप, 5 क्वेश्चन पूछने हैं, बहुत टाइम लगेगा। ओके तो सतीश जी, सबसे पहले ये बताइए कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है?
0: सबसे तेज दौड़ने वाला चीता।
1: बिल्कुल सही जवाब। और किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है?
0: शेर।
1: बिल्कुल सही। किस जानवर की गर्दन सबसे लंबी होती है?
0: ऊंट का, जिराफ होता है ऊंट।
1: जल्दी बताइए, जिराफ या ऊंट?
0: जिराफ।
1: जिराफ, बिल्कुल सही जवाब। 3 क्वेश्चंस के आंसर आपने बिल्कुल सही दे दिए हैं। इससे पहले लिसनर ने कहा था कि शायद ही कोई बन पाए, लेकिन मुझे लग रहा है आप बन जाएंगे, है ना? ठीक है, तो सतीश जी बताइए, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है?
0: ऊंट।
1: बिल्कुल सही जवाब। 4 जवाब बिल्कुल आपने सही दे दिए हैं। अब आपको ये बताना है कि नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक भारत में हम कब मना रहे हैं? अक्टूबर में मना रहे हैं, ये अभी चल रहा है, आपको कब से कब तक है ये बताना है।
0: नेक्स्टबर समझ नहीं पाए
1: जी। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह हम मना रहे हैं अक्टूबर के महीने में। मैंने शुरुआत प्रोग्राम जब शुरुआत की थी उस टाइम भी उसके बारे में जिक्र किया था। कब से कब तक रहता है वो वीक? सिर्फ 1 आंसर दे देंगे तो आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस।
0: मैडम जी, मैं समझ नहीं पाए आपकी।
1: अच्छा, तो अक्टूबर के महीने में हम राष्ट्रीय वन्य जीव वीक कब से कब तक मनाते हैं? किस दिन से कितने दिन तक का रहता है? वीक है, सप्ताह है, तो 1 हफ्ते का रहेगा, है ना? आपको डेट बतानी है, पहली डेट ही बता दीजिए।
0: माना कि
1: हेलो,
0: आवाज नहीं आ रही है
1: जी जनाब, आवाज नहीं आ रही, और शायद मेरी आवाज भी जा रही है। मेरी आवाज तो कहीं नहीं जा रही है, बस मुझे टाटा बाय बाय करना होगा, क्योंकि अब वक्त जो कह रहा है वो कह रहा है कि इतना ही वक्त था रेनबो जीनियस का, आज कोई रेनबो जीनियस बन नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते फिर संडे आएगा, फिर दोबारा से वो चिर परिचित आवाज़ें आपके साथ रहेंगी, और उनके साथ आप खेलेंगे रेनबो जीनियस, 5 सवालों के जवाब देंगे, उनका आंसर देंगे और बनेंगे रेनबो जीनियस। फिलहाल मैं यहीं पर लेती हूँ विदा, क्योंकि अगले प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगी, कौन रहेंगी? हैं कोई जो सिटी राइट्स लेकर आएंगी आपके साथ, भारती है उनका नाम, और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम्स वो करती हैं, तो उनका इंतज़ार कीजिए। फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ विदा इस वादे के साथ कि बहुत ही जल्दी होगी आपसे फिर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और इसने सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान तथा ओडिशा और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे। सरकार की इस पहल से भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, शोध और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। पीएम सेतु योजना का आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना बढ़ाई जाती है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी को मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। इन 6 सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा जबकि मतगणना शुक्रवार को की जाएगी। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थत्तन चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा। विधानसभा सीटें मौजूदा विधायकों के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं जबकि कांग्रेस नेता प्रद्युत बरदोलोई के इस्तीफे के बाद नौगांव लोकसभा सीट रिक्त हुई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सिटीजन पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ टकराव का कोई सैन्य या प्रतिबंधों पर आधारित समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि तनाव खत्म करने का एकमात्र तरीका कूटनीति है। आज तेहरान में विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राजदूतों और प्रतिनिधियों से बातचीत में श्री अराक्ची ने उम्मीद प्रकट की है कि अमरीका समझदारी और तर्कसंगत ढंग से काम लेगा। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने आशा प्रकट की है कि टकराव खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। यमन की सेना ने दावा किया है कि देश के कुछ अहम मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं सऊदी अरब ने हूतियों के इस दावे को खारिज किया है कि रियाद को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया था। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमलों की पुष्टि की है। एशियाई खेल 2026 का जापान के नगोया में आधिकारिक समापन हो गया। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज वर्ष 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू डांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ पदक तालिका में 4th स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are important agendas for emerging and middle powers, EMPs. Speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today, the External Affairs Minister said emerging and middle powers are from Global South and Global North who are united in their goal of being more relevant. He pointed out that the world is changing, its agenda and landscape is changing, and there is a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. Dr. Jaishankar drove home the point that the changing landscape which drives the emerging and middle powers debate is of a repositioning US, rise of China and greater independence. Later, in conversation with President of Munich Security Conference Wolfgang Ischinger and State Secretary Germany Federal Foreign Office Bernard Kosch, Dr. Jaishankar said India has decades of high growth ahead and a demography which will sustain that level of growth. Vice President C.P. Radhakrishnan has emphasized that corporate governance is the invisible infrastructure of a modern economy. Addressing the 58th Foundation Day of Institute of Company Secretaries of India in New Delhi today, the Vice President said that strong institutions and sound governance will be as important as physical and digital infrastructure in building a Viksit Bharat. Mr. Radhakrishnan also said that investor confidence is essential for sustained economic progress. The Vice President noted that India is one of the fastest growing economies in the world while simultaneously entering into an era of rapid technological advancements.
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy, and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
2: Campaigning for by-elections to five assembly constituencies across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and one Lok Sabha constituency in Assam ends today. Polling for the six seats will be on Tuesday, while counting of votes will take place on Friday. The assembly constituencies going to polls are Madurantakam and Dharapuram in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rejinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, polling will be held for Nagaon Lok Sabha constituency. The assembly seats fell vacant following the resignation of the sitting legislators, while the Nagaon Lok Sabha seat became vacant after the resignation of Congress leader Pradyut Bordoloi. Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITI Scheme completed 1 year today. The scheme of the Ministry of Skill and Development and Entrepreneurship was launched on this day last year. The initiative seeks to strengthen industry-led governance, upgrade training infrastructure and promote demand-driven courses in line with evolving workforce requirements. Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh will chair the 17th Pension Adalat in New Delhi tomorrow. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions informed that 897 long pending grievances of super senior pensioners and family pensioners to be taken up for redressal. The ministry said Dr. Singh will release flyers highlighting the success stories of the 16th Pension Adalat, which was held on 13th May of this year. The Asian Games 2026 have officially concluded at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium in Nagoya, bringing more than 2 weeks of action-packed competition across 43 disciplines to an end. The president of the Olympic Council of Asia officially declared the games closed, marking the conclusion of a memorable edition of the continental sporting event. The ceremonial torch and flag from inaugural Asian Games were handed over to representatives of Qatar, which will host the next edition in Doha in 2030. Indian shooter Neeru Dhanda, who won 2 gold medals and a silver during the games, carried the Indian flag as the country's flag bearer at the closing ceremony. India finished 4th in the overall medal standings with an impressive 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And that is the end of this news bulletin.
3: Akashvani Guwahatir Pragjyotishpur. Prasarito hoise মিডিয়াম ৱেভৰ 290.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্জ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত। এতিয়াৰ বিভিন্ন দায়িত্বত আছে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত কৌস্তভ দাস, বিবেক শৰ্মা, ফটিক চন্দ্ৰ বৰ্মন, অমলেশ কলিতা, ট্ৰান্সমিটাৰত অজয় আনন্দ, শ্বেখ আব্দুল্লাহ আহমেদ, ষ্টুডিঅ' আৰু ডিউটি ৰুমৰ দায়িত্বত মই কৰবী হাজৰিকা। এতিয়া আগবঢ়াইছো যুৱক যুৱতীসকলৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান যুৱবাণী।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: Really is a point of convergence.
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से

तकनीक के विकास में के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि यह क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आगे के आवंटन पर विचार किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। समाधान की सफलता दर 71.79% है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से निर्देश दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों की मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का दृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में

0: गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को, पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are important agendas for emerging and middle powers. Speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today, the External Affairs Minister said emerging and middle powers are from Global South and Global North who are united in the goal of being more relevant. He pointed out that the world is changing, its agenda and landscape is changing, and there is a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: Union Agriculture and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan has said the centre will support Andhra Pradesh in providing pakka houses to poor families in the state. The minister, along with Chief Minister N. Chandrababu Naidu, launched a pilot project for constructing houses using 3D concrete printing technology at Buripalayam village in Guntur district today. Speaking on the occasion, Mr. Chauhan said the centre has sanctioned 3 lakh houses for Andhra Pradesh and would sanction another 3 lakh houses before the completion of the ongoing construction. He added that further allocations would be considered based on the requirement. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that a truly developed India must be built on trust among citizens, strong family values, character among the youth and compassion in society. Mr. Radhakrishnan was addressing the Mahaparv Samapna ceremony in 2026 organized by the Bhagwan Mahavir Memorial Committee and the Jain Mahasabham in New Delhi today. He described the occasion as a celebration of the universal values of forgiveness, friendship, non-violence and inner purification. Campaigning ended today for by-elections to 5 assembly constituencies

0: লতা মঙ্গেশকৰ আৰু সহশিল্পীৰ কণ্ঠৰ ভজন শুনিলে। ভজনৰ অনুষ্ঠানটি আজিলৈ ইমানতে অন্ত পৰিল। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মৈ জয়া ভারতী। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: Really is a point of convergence.
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी

0: राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 लाख मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
2: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

0: 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
1: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत जीरो FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब जीरो FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
1: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
3: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
1: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
4: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China and growing global interdependence.
6: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
5: Citing the Quad as an example, Dr. Jaishankar said it demonstrates cooperation among middle powers with an established major power.
6: Today in a maritime space, in the Indo-Pacific space, we have Quad as an example of, I would say, emerging middle power cooperation with an emerged power. A second example would be in the field of connectivity, where you have something like the IMEC initiative, the India Middle East Europe Connectivity Corridor, the International North-South Transport Corridor, even the Polar Route, the Northern Sea Route could be the subject of cooperation.
5: Second Principal Secretary to the Prime Minister Shaktikant Das has said restoration of the health of the financial sector has been the defining feature of India's resilience in recent years. He was speaking at the Kautilya Economic Conclave in New Delhi today.
7: India's financial sector has emerged as a strong pillar of economic growth, supported by reforms such as the Insolvency and Bankruptcy Code, bank recapitalization, and constructive regulatory oversight. Gross non-performing assets have fallen sharply to 1.68% in June 2026,

0: श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस सभा में प्रस्तुत है हिंडोल पेंसे का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी नाउ ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय हिंडोल पेंसे।
0: श्री हिंडोल पेंसे का जन्म सांगीतिक परिवार में हुआ। उन्होंने शास्त्रीय गायन की शिक्षा घर के संगीतमय वातावरण में अपने पिता एवं गुरु श्री सदानंद पेंसे से प्राप्त की। आपके गायन की विशेषता राग की सिलसिलेवार सौंदर्यपूर्ण एवं लय के साथ खूबसूरत बढ़त है। इसके अलावा आप सुगम गायन जैसे भावगीत भक्ति गीत नाट्य गीत में भी निपुण है। आपने अनेक फिल्मों धारावाहिकों एवं महानाट्यों में गायन और पार्श्व संगीत का सृजन किया है। आपने देश के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपना सफल गायन प्रस्तुत किया है। आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। श्री हिंडोल पेंसे अपने कार्यक्रम का आरंभ राग बिहाग से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल है कवन ढंग तोरा। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल है बाजे रे मोरी पायल। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अजिंक्य गलांडे तथा हारमोनियम पर नारायण दरेकर। लीजिए सुनते हैं राग बिहाग। कलाकार है हिंडोल पेंसे।
1: हिंडोल पेंसे बोर्न इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस ही हैड हिज म्यूजिकल ट्रेनिंग इन रिच म्यूजिकल एनवायरमेंट एट होम फ्रॉम हिज फादर एंड गुरु श्री सदानंद पेंसे। हिज सिंगिंग इज कैरेक्टराइज बाय द डीप कमिटमेंट टू रागदारी with a particular emphasis on his traditional form and aesthetic beauty. He has performed at number of prestigious musical and cultural events. He is also known for background music for films, serials and Mahanatya. Hindol Pense begins his vocal recital with Raag Bihag. Vilambit Khayal, Kavana Dhanga Tora is set to Ektal and Drut Khayal, Bajere Mori Payal is set to Tintal. Accompanied him on tabla is Ajinkya Galande and on harmonium Narayan Darekar. Let's listen to Raag Bihag by Hindol Pense.

0: अभी आप राग बिहाग सुन रहे थे। कार्यक्रम का समापन श्री हिंडोल पेंट से राग मधु कौन से कर रहे हैं। मध्य लय ख्याल झपताल में निबद्ध है, बोल है देहो दरस मोहराम, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल है आजा रे आजा पथिकवा।
1: That was Raag Bihaag. Hindol Pinse conclude his vocal recital with Raag Madhukons. Madhyalaya Khayal, Deho Daras Moheram is set to Jhaptal, followed by Drut Khayal, Aajare, Aajare, Patikava in Tintal.

0: ये था राग मधुकौंस। इसी के साथ ही आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम समाप्त होता है, जिसमें आपने श्री हिंडोल पेंडसे का शास्त्रीय गायन सुना। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री अजिंक्य गलांडे और हारमोनियम पर श्री नारायण दरेकर। आकाशवाणी के नागपुर स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was राग मधुकौंस। With this, tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा comes to an end. You have been listening to the classical vocal recital by श्री हिंडोल पेंडसे. He was accompanied on tabla by Ajinkya Galande and on harmonium by Narayan Dareker. This program was recorded in the studio of Akashwani Nagpur and broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हैं। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: Really is a point of convergence।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मित मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मित तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China and growing global interdependence.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
3: The minister also emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. He stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today handed over the first installment of 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen 2.0 at an event in Guntur district. Mr. Chauhan also laid the foundation stone for the country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology, comprising 177 houses at a cost of 14 crore rupees. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu was present on the occasion. Campaigning ended today for by-elections to 5 assembly constituencies across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for the 6 seats will be held on Tuesday, while counting of votes will take place on Friday. The assembly constituencies going to polls are Madurandagam and Tharapuram in Tamil Nadu, Tattanchavadi in Puducherry and Rijinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Nagaon Lok Sabha constituency. The assembly seats fell vacant following the resignation of the sitting legislators, while the Nagaon Lok Sabha seat became vacant after the resignation of Congress leader Pradyut Bordoloi. Indian Ambassador to UAE Deepak Mittal has said prayers continue to flow in for good health of Captain Smith Machar. In a social media post, Ambassador Mittal said he is recovering well and in good spirits. He added that the embassy remains in touch with the local authorities and the family and is extending all possible assistance. Iran has said the Strait of Hormuz will not reopen until the United States meets 7 conditions outlined in a June interim agreement, as Tehran and Washington remain at odds over efforts to end their conflict. Iranian state media quoted Parliament Speaker Mohammad Bakar Kalibaf as saying that Tehran's position on reopening the strategic waterway was completely clear and firm. Separately, Iranian Army spokesperson Mohammad Akrimenia said Iran will seek to extend the range of its missiles following its recent war with the United States. Meanwhile, US President Donald Trump has claimed that the war with Iran will end very quickly and predicted that oil prices will fall sharply once the conflict was over. The curtain has come down on the Asian Games with a dazzling closing ceremony at Aichi Nagoya in Japan. The ceremony featured the parade of athletes, lowering of the Asian Game flag and the handover of the ceremonial torch and flag to Doha, host of the 2030 edition. India's women's flag bearer and shooting star Neeru Dhanda carried the Indian tricolour at the closing ceremony. India finished fourth in the overall medal standings with 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi extended compliments to every member of the Indian contingent for representing the nation with determination, passion and remarkable sporting spirit. And with that, we end this news bulletin.
4: Akashvani Guwahati, Pragjyotishpur.